एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 45 सेकेंड्स हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल

0: अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। कार्यक्रम में सबसे पहले वंदन देश का समूह स्वरों में।

समूह स्वरों में अभी हमने सुनी देश वंदना। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शौनक अभिषेकी की गाय इस भजन को।

0: जगजीत सिंह और साथियों की गायस शिव भजन के साथ ही कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होती है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम खेती की बात का। आज का समसामयिक सुझाव है कोचई के खेती विषय पर। वाचन स्वर है अभिनव गौराहा के।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। देखा भाई, खरीफ के सीजन अब लठियाए लगे हैं। ऐसन मा हम खेती किसानी मा जुट जाथन। आज आप मन पर लाए हन पोषण ले भरपूर अरबी मतलब कोचई के खेती के जानकारी। अरबी ला घुइया कोचई आनी बानी के नाम से क्षेत्र अनुसार जाने जाते। एकर खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में करे जाते, लेकिन सिंचाई सुविधा होय मा गर्मी के मौसम में भी एकर खेती करे जा सकत है। कंद मा मुख्य रूप से स्टार्च होते। आप मन ला बताए कि कोचई है फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते। एकर अलावा एमा भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट घलो पाए जाते। जलवायु के बात करी, कोचई ला गर्म और आर्द्र जलवायु के जरूरत होते। ए ग्रीष्म और वर्षा दोनों मौसम में उगाया जा सकत है। उत्तरी भारत के जलवायु कोचई के खेती पर उपयुक्त हवे। वैसे एला उष्ण और उपोष्ण देश मन में घलो उगाए जा सकत है। भूमि के तैयारी के बात करी, कोचई के खेती पर खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवांश और उचित जल निकास युक्त रेतीला दोमट भूमि उपयुक्त होते। खेत के तैयारी पर एक पैत माटी पलटे वाले हल से और 3-4 पैत देसी हल से जुताई करना चाहिए। खेत के तैयारी के समय बढ़िया सरे हुए गोबर के खाद ला खेत के आवश्यकता अनुसार 15-20 दिन पहले मिला देना है। उर्वरक के बात करी, हमन ला कोनो भी खेती करत हन तो ओकर से पहले माटी के जांच करवा लेना चाहिए। हर 2-3 साल मा हमन ला अपन खेत के माटी के जांच कराना चाहिए। मृदा जांच के बाद ही उर्वरक मन के उपयोग करना चाहिए, जेकर से हमन ला लाभ होते, हमर पैसा बांचते। अधिक उपज प्राप्त करे बर नत्रजन 100 किलो, स्फुर 60 किलो, पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करना है। हमन जानथन नाइट्रोजन ला हमन यूरिया के माध्यम से देथन, नत्रजन ला 2-3 पैत में देना है। बाकी स्फुर और पोटास ला हम जब खेत की तैयारी करथन वही समय खेत में मिला देना है। बोए के समय के बात करी, खरीफ में जून से 15 जुलाई और जायद में फरवरी मार्च में बुआई करे जाते। बीज के मात्रा और बीजोपचार की बात करी, बुआई बर अंकुरित कंद 8-10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जरूरत होते। बोए से पहले कंद मन ला कार्बेंडाजिम 12%, मेनकोजेब 63%, WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की घोल में 10 मिनट डुबो के उपचारित करके बुआई करना है। बुआई के विधि के बात करी, समतल क्यारी मन मा कतार के आपसी दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के दूरी 30 सेंटीमीटर और कंदला 5 सेंटीमीटर के गहराई में बुआई कर सकत हन। उन्नत किस्म की बात करी, पंचमुखी, सफेद गौरैया, सहस्त्रमुखी, C9, बापटला सिलेक्शन, ये सब प्रमुख किस्म है। सिंचाई की व्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं हुए। बढ़िया उत्पादन पर बरसात नहीं हुए मा 10-12 दिन की अंतराल मा आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करना है। निंदाई गुराई बड़ जरूरी होते। खर पतवार मतलब नष्ट करे बर कम से कम 2 पैत निंदाई गुराई करे जा सकते है। अच्छा पैदावार बर कंद वाले फसल ला हल्का गुड़ाई की जरूरत पड़ते। बढ़िया एकर खेती करत हन त हमन ला बुआई से 130-140 दिन बाद जब पत्ती मन सूख जाते 300-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो सकत है। पौध संरक्षण के बात करी, झुलसा रोग एमा प्रमुख होते। झुलसा रोग से पत्ती मन मा करिया करिया धब्बा हो जाते, बाद मा पत्ती मन गल के गिरे लगते, जेकर से खर उपज मा प्रभाव पड़ते। एकर रोकथाम बर 15-20 दिन के अंतर मा डाइथेन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 12%, मेनकोजेब 63%, WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के छिड़काव करत रहना है। एकर संग में ही फसल चक्र ला अपनाना है। सुंडी और मक्खी कीट, कोचई के पत्ती ला खाए वाले कीट सुंडी और मक्खी कीट द्वारा हानि होते। काबर ये कीड़ा पत्ती ला खा लेते, जेकर रोकथाम बर प्रोपेनोफास 50 EC, साइपरमेथ्रिन 3%, 1 ml 2 लीटर पानी के 500 लीटर प्रति हेक्टेयर घोल बना के छिड़काव करना है।

0: राम राम, जय जोहार।
1: कोचे की खेती विषय पर अभिनव गौराहा के वाचन स्वर में हमने सुनी खेती की बात। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का और स्वर है ए हरिहरण के।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

अभी हम सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। संगीत संयोजन रहा सतीश भाटिया का और स्वर थे ए हरिहरन के। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम नव विहान का। आज हम लेकर आए हैं PM गतिशक्ति पर चर्चा।

श्रोताओं, किसी भी देश की तरक्की की रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि वहां का बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। पहले हमारे देश में एक सड़क बनती थी तो कुछ ही दिनों बाद टेलीफोन विभाग उसे खोद देता था, फिर पानी की पाइपलाइन के लिए खुदाई होती थी। विभागों के बीच तालमेल की इसी कमी को दूर करने और देश के विकास को रॉकेट जैसी रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 में एक महाअभियान की शुरुआत की थी, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। आज हम बातें करेंगे कि इस योजना ने पिछले कुछ वर्षों में देश की तस्वीर को कैसे बदला है। श्रोताओं, पीएम गतिशक्ति कोई साधारण सरकारी योजना नहीं है, ये एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने सरकार के 16 से ज्यादा मंत्रालयों जैसे रेलवे, सड़क परिवहन, नागरिक उड्डयन जैसे कि मंत्रालयों को एक डिजिटल छत के नीचे ला खड़ा किया है। इस योजना का सबसे बड़ा जादू है इसका जीआईएस आधारित डिजिटल मैप। अंतरिक्ष और उपग्रह तकनीक की मदद से इस प्लेटफॉर्म पर देश के जंगलों, नदियों, पहाड़ों, सड़कों और रेल लाइनों की 1400 से भी ज्यादा डेटा लेयर्स अपलोड की गई है। इसका फायदा यह हुआ कि अब किसी भी नए प्रोजेक्ट को प्लान करने में महीनों का समय नहीं लगता। पहले जिस प्रोजेक्ट की मंजूरी में 6-6 महीने लग जाते थे, गतिशक्ति के आने के बाद वो काम चंद हफ्तों में और कभी कभी तो कुछ दिनों में ही पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ ठोस आंकड़ों की जो ये बताते हैं कि जमीन पर क्या बदलाव आया है। श्रोताओं, जब से ये योजना शुरू हुई है तब से अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली 100 से ज्यादा बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इस मंच के जरिए हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, गतिशक्ति का दायरा अब सिर्फ केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इसे हाथ मिला लिया है। केंद्र सरकार राज्यों को इसके लिए 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज भी दे रही है ताकि राज्यों के कोने कोने तक विकास की लहर पहुंचे। श्रोताओं, इस योजना का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। आज भी भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्च दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। गतिशक्ति के माध्यम से देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, रेलवे और बंदरगाहों को आपस में जोड़ा जा रहा है और देश भर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, फैक्ट्रियों से सामान सीधे और तेजी से बंदरगाहों और बाजारों तक पहुंचे जिससे भारत का व्यापार बढ़े और चीजें सस्ती हो। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि पीएम गतिशक्ति ने पुरानी संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये नए भारत का वो डिजिटल रोड मैप है जो देश को विकसित बनाने के संकल्प को सच कर रहा है। जब रास्ते

सुगम होंगे, दूरियां घटेंगी और समय बचेगा, तभी तो हमारा भारत आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा। इसी विचार के साथ अपने साथी अंशुल गुलकरे को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

पीएम गति शक्ति पर कार्यक्रम नव विहान अभी हमने सुना। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो रहे हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम आज सुबह, जिसमें होगी यातायात संबंधित जानकारी, ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर में। यादों के झरोखे से इस कार्यक्रम को सुनिएगा प्रातः 7:30 पर। आज सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई। कलाकार होंगे विजय राठौर, बरसाती कौशिक, ईश्वरी बनर्जी और साथी।

तुहर गोट हमर गीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 10 बजे प्रस्तुति होगी मेरी यानी कि अंशुल गुलकरी की। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद, इस फरमाइशी कार्यक्रम को सुनिएगा सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी को सुनिएगा सुबह 11:00। शाम 5:00 सुनिएगा सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। आज शाम 5:05 पर होगी ग्राम सभा, जिसमें होगी बातचीत खरीफ 2026 में उर्वरक आदान व्यवस्था विषय पर जांजगीर चांपा के उपसंचालक कृषि से महंगू भैया की बातचीत। युवा जगत हम लेकर आएंगे शाम 5:35 पर, जिसमें आज की बात होगी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और ग्रंथालय की महत्ता विषय पर। साथ ही होगा क्रम प्रकृति और पर्यावरण। शाम 6:20 और शाम 7:00 सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे गरीब कल्याण विषय पर एनएसडी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का अनुप्रसारण। रात्रि 8:00 सुनिएगा सुगम संगीत, कलाकार होंगे आदेश श्रीवास्तव। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में हम

0: कृत कार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में गायकी के लिए लोकप्रिय रही। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5 से 9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में

0: में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। वक्त है प्रातः कालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का।

0: आज सुबह
1: कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोताओं को अंशुल गुलकरी का प्यार भरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम में आप सभी प्यारे श्रोताओं का देश के सभी माता पिता और अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज कैलेंडर का पन्ना एक बहुत ही खूबसूरत तारीख बयां कर रहा है, 1 जून। यह दिन बेहद अनूठा है क्योंकि आज प्रकृति और समाज के दो सबसे बड़े आधार स्तंभों का उत्सव है। आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी वैश्विक माता पिता दिवस भी है और आज ही वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस भी है। कितना अद्भुत संयोग है ना। एक तरफ माता पिता का वो निस्वार्थ प्रेम जो बच्चे के पूरे जीवन को आकार देता है और दूसरी तरफ दूध जो प्रकृति का दिया वो पहला संपूर्ण पोषण है जो माँ के आंचल से शुरू होकर हमारे जीवन को ऊर्जा देता है। आज का हमारा ये सफर इसी प्रेम और पोषण के नाम है। श्रोताओं, आज के इस दौर में बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना एक बेहद खूबसूरत एहसास तो है, लेकिन हम सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज के समय में ये एक बड़ी चुनौती भी बन गया है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, आंगन बड़े होते थे और बच्चे खेल कूद में अपनों के बीच कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज समय बदला है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, एकल परिवार है। ऐसे में बच्चों को पर्याप्त समय दे पाना, उनकी मानसिक और शारीरिक जरूरतों को समझना वाकई एक संवेदनशील काम हो गया है। आज माता पिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि बच्चों को भौतिक सुख सुविधाएं कैसे दें, बल्कि चुनौती ये है कि इस डिजिटल युग में बच्चों को सही और गलत का अंतर कैसे समझाएं। बातें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं हमारे आसपास होने वाली यातायात संबंधित जानकारी के बारे में ट्रैफिक अपडेट्स में।
1: सुप्रभात मित्रों, अपने शहर की, अपने गांव की, अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था जानने आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक रेडियो कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र से लेकर सभी ग्रामीण सड़कों में यह युग है कि संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी इस सुगम यातायात व्यवस्था का लाभ उठाएं

0: किंतु यातायात नियमों को अपनाते हुए। मित्रों, सुगम और सुरक्षित यातायात में बाधक तत्वों में सड़कों में बेजा कब्जा प्रमुख है। ये समस्या शहर, कस्बा, गांव सभी जगह है। प्रायः सड़क, गली आदि में लोग अपने घर या दुकान के सामने शासकीय जमीन में कब्जा कर बरामदा, मकान या दुकान की शेड आदि बनाकर सड़कों के बड़े भाग में कब्जा कर लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग मंदिर आदि के आड़ में भी सड़कों में बेजा कब्जा कर लेते हैं। अपने दुकान या घर के सामने मुख्य मार्ग से जोड़कर छोटा सा मंदिर या कोई धार्मिक स्थल बनाकर मंदिर के पीछे बड़े शासकीय भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं। इससे सड़कें संकीर्ण होती हैं, लोगों को आवागमन में या अन्य कार्यों में परेशानी होती है। सड़कों के संकीर्ण होने से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में लोग घायल होते हैं या मारे भी जाते हैं। इस सार्वजनिक समस्या से निदान हेतु शासन स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जाते हैं। इस अभियान के अंतर्गत कई बार बड़े बड़े पक्के निर्माण अर्थात दीवार, मकान आदि एक्सीवेटर से धराशायी किया जाता है। जिले में इस समय बेजा कब्जा हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। आज भी जिले के कुछ स्थानों में बेजा कब्जा हटाया जा रहा है। बेजा कब्जा निवारण अभियान के दौरान तोड़फोड़ से संबंधितों को बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है, शासन को भी इससे क्षति होती है। अतः आप सभी से पुनः अनुरोध है, ऐसे असामाजिक कार्य से सर्वथा दूर रहें, ताकि कोई सड़क दुर्घटना का शिकार ना हो, कोई अकाल ना मारा जाए, यातायात भी सुगम हो। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट के पहले हम बातें कर रहे थे ग्लोबल पेरेंट्स डे और वर्ल्ड मिल्क डे पर। प्यारे श्रोताओं, हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बच्चों को केवल बड़ा नहीं करना है, उन्हें गढ़ना है, और गढ़ने की इस प्रक्रिया में आज सबसे जरूरी है बच्चों की अच्छी चीजों से दोस्ती कराना। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि बच्चे स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल हो या टीवी, इन्हीं में खोए हुए हैं। हमारा आपसे एक बहुत ही विनम्र आग्रह है, एक छोटी सी गुजारिश है, आइए अपने बच्चों की दोस्ती किताबों से कराएं, उन्हें प्रकृति के करीब ले जाएं। शाम को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उनके साथ पार्क में टहले, पेड़ों और पक्षियों से उनका परिचय कराए। जब बच्चा मिट्टी में खेलता है, तितलियों के पीछे भागता है, तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास प्राकृतिक रूप से होता है। अच्छी चीजों से दोस्ती का मतलब ये भी है कि हम उन्हें रिश्तों की अहमियत समझाएं, उन्हें दादा दादी, नाना नानी के पास बैठने के लिए प्रेरित करें, उनसे कहानियां सुनने को कहें। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, बल्कि इनमें जीवन के वो संस्कार छुपे होते हैं जो कोई भी स्कूल या इंटरनेट नहीं सिखा सकता। कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं इस गीत को।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, जहां अच्छी चीजों से दोस्ती जरूरी है बच्चों की, वहीं आज के इस भटकाव भरे बुरे दौर में बुरी चीजों से

दूरी बनाना भी उतना ही आवश्यक है। और जब हम बुरी चीजों की बात करते हैं तो हमारा इशारा सिर्फ गलत आदतों की तरफ नहीं है। आज के समय में अत्यधिक स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के बचपन को चुपके से चुरा रहा है। यहां हम बच्चों को आदेश नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो

आदेश नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भोजन करते समय मोबाइल या टेलीविज़न ना देखे, तो हमें भी डाइनिंग टेबल पर अपने फ़ोन को दूर रखना होगा और टेलीविज़न बंद रखना होगा। उस समय आप चाहें तो आकाशवाणी का आनंद ले सकते हैं और बता सकते हैं रेडियो की महत्ता, जैसे कि इसका सस्ता और सुलभ होना, सूचना और मनोरंजन का अनूठा संगम होना, संकट का सच्चा साथी होना, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच जैसी और भी बहुत सी जानकारियां। आइए एक प्यार भरी कोशिश करें, घर में एक नो गैजेट जोन या नो गैजेट टाइम बनाएं, जहां परिवार का हर सदस्य मोबाइल छोड़कर सिर्फ एक दूसरे से बात करे, हंसे और मुस्कुराए। इसके साथ ही आज के दौर में जो एक और बड़ी चिंता है वो है बच्चों के खान पान की आदतें। फास्ट फूड, पैकेट बंद चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बच्चों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। यहीं पर आज के दूसरे महत्वपूर्ण दिन का महत्व समझ में आता है, विश्व दुग्ध दिवस। जी हां श्रोताओं, दूध को हमारे आयुर्वेद में और विज्ञान में भी एक संपूर्ण आहार माना गया है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर दूध बच्चों की बढ़ती हड्डियों और दिमागी विकास के लिए अमृत के समान है। लेकिन आज बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं और पैकेज्ड जूस या रंग बिरंगे कोल्ड ड्रिंक्स की जिद करते हैं। यहां भी हमें डांट डपट का रास्ता नहीं चुनना है। माता पिता होने के नाते हमारी ये कला होनी चाहिए कि हम कैसे इस अमृत को बच्चों के लिए आकर्षक बनाएं। हम उन्हें मैंगो शेक, बनाना शेक या हल्के घरेलू मसालों से बना हुआ स्वादिष्ट दूध दे सकते हैं। जब हम प्यार से खेल खेल में उन्हें पोषण का महत्व समझाएंगे, तो वो खुद ब खुद जंक फूड और हानिकारक ड्रिंक्स से दूरी बना लेंगे। श्रोताओं, माता पिता होना दुनिया का सबसे जिम्मेदारी भरा और सबसे खूबसूरत पद है। आज इस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के मौके पर आकाशवाणी के माध्यम से मैं आप सभी से एक भावुक अपील करता हूं। अपने बच्चों को महंगे खिलौने भले ही थोड़े कम दीजिए, लेकिन उन्हें अपना समय, जी हां समय भरपूर दीजिए। उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनिए। जब वो स्कूल से आए तो सिर्फ ये मत पूछिए कि आज क्या पढ़ाई हुई या टेस्ट में तुम्हारे कितने नंबर आए, बल्कि ये भी पूछिए कि आज तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा या क्या आज तुम किसी बात से उदास हुए। जब बच्चों को घर में एक सुरक्षित और बिना किसी शर्त के प्यार मिलने वाला माहौल मिलता है, तो वो बाहर की किसी भी बुरी संगति या तनाव के शिकार हो ही नहीं सकते। परवरिश का कोई तय नियम नहीं होता, ये तो रोज प्यार और धैर्य से सींचा जाने वाला एक पौधा है। जैसे पौधे को बढ़ने के लिए पानी और धूप दोनों चाहिए, वैसे ही बच्चों को बढ़ने के लिए अनुशासन की छाव और प्यार की गर्माहट दोनों की जरूरत होती है, नाराजगी की नहीं।

श्रोताओं, आज 1 जून को आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम अपने बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उनके आहार में दूध और संतुलित पोषण को शामिल करेंगे और उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें अपना वक्त, अपने संस्कार और अपना असीम धैर्य देंगे। तनाव मुक्त रहिए, बच्चों के साथ खुद भी थोड़े बच्चे बन जाइए, खिलखिलाइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट या आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य की नींव है। दुनिया के सभी माता पिता को सादर नमन करते हुए और आप सभी को वैश्विक माता पिता दिवस और विश्व दुग्ध दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए अब आपका ये दोस्त अंशुल गुलकरी आपसे इजाजत चाहता है। कार्यक्रम आज सुबह से, नमस्कार।

0: आज सुबह
1: कार्यक्रम आज सुबह भी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम यादों के झरोखे से का। कार्यक्रम यादों के झरोखे से का पहला गीत है फिल्म फरेब से। आवाज सुमन कल्याणपुर की है। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं उषा खन्ना।

कार्यक्रम यादों के झरोखे से में अभी हमने सुना फरेब फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत है कमर जलालाबादी का लिखा हुआ, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फिल्म का नाम है जौहर महमूद इन गोवा। आवाजें सुमन कल्याणपुर और मुकेश की है।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म फर्स्ट लव से। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है, आवाज सुमन कल्याणपुर की और संगीत दत्ताराम का।

कार्यक्रम का अगला गीत लिखा है नक्श लियालपुरी ने, संगीत सपन जगमोहन का है, आवाज सुमन कल्याणपुर की और फिल्म का नाम है चेतना।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम यादों के झरोके से अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज सुमन कल्याणपुर की है और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म साथी का गीत। सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं नौशाद।

कार्यक्रम यादों के झरोके से के अगले और अंतिम गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, आवाज सुमन कल्याणपुर की है और फिल्म का नाम है सुहाना सफर।

सुमन कल्याणपुर के गाय सुहाना सफर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोके से अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।

0: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सावधानियां और बचाव विषय

0: परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम में अभी हमने सुना बरसाती कौशिक और ईश्वरी बैनर्जी के गाए इस श्रम गीत को। कार्यक्रम अमराई में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बरसाती कौशिक और ईश्वरी बैनर्जी की आवाजों में ही कार्यक्रम अमराई का अगला गीत।

0: बरसाती कौशिक और ईश्वरी बनर्जी के गाए इसी गीत के साथ ही छत्तीसगढ़ी गीतों के कार्यक्रम अमराई को अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनवाएंगे गाने।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनते हैं ये गीत। सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गीत है, नेहा कक्कड़ की आवाज।

सन ऑफ सरदार टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज नेहा कक्कर की थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी विश्व वैश्विक मातृ पितृ दिवस, हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का। यह अवसर है माता पिता के प्रेम त्याग और बच्चों के पालन पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जिनकी उंगली थामकर हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वो है हमारे माता पिता, हमारे जीवन की पहली पाठशाला और पहले गुरु होते हैं। उनके प्यार दुलार और मार्गदर्शन से ही हमारा सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। आइए हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनका सहारा बने और हमेशा ये एहसास दिलाएं कि वे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माता पिता का सम्मान हर रोज किया जाता है, जीवन भर अपना कर्तव्य निभाई जाने वाली हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत कृष्णा की आवाज में आप सुन रहे थे। इस गीत को राजशेखर ने लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब गदर 2 फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाजों में गदर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

0: मुल्क फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सफाकत अली और साथियों की आवाजों में। शकील आजमी ने इस गीत को लिखा था, अनुराग सैकिया का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आज है वर्ल्ड मिल्क डे, आज विश्व दुग्ध दिवस है। हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य के लिए दूध के महत्व को जानना, डेयरी क्षेत्र के योगदान, या कहें कि डेयरी क्षेत्र के समग्र योगदान को जानना। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे सिर्फ पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि उन लाखों पशुपालकों, डेयरी कर्मियों और वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के योगदान को भी सम्मान देने की ओर ये दिन याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है, जिनके प्रयास से प्रतिदिन शुद्ध दूध हमारे घरों तक पहुंचता है। एक ग्लास दूध में किसान की मेहनत, पशुपालकों का समर्पण और उदारता और त्याग, साथ ही डेयरी व्यवस्था का अथक प्रयास भी इसमें समाहित होता है। विश्व दुग्ध दिवस पर आइए इस अमूल्य योगदान का सम्मान करें और संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन का संकल्प लें। और एक संदेश आपको और सुनाते हैं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं।

सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे स्वानंद किरकिरे ने लिखा था और अमित त्रिवेदी का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

सही पहचाना आपने। आज के फनकार हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर की ये विशेषता भी है और अभिशाप भी कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती है। कई बार बड़े बड़े दिग्गज भी धोखा खा जाते हैं सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज में फर्क करने में।

सरगम के अथाह सागर में डूबकर गीतों के सच्चे मोती तलाशने की धुन जिन्हें रही है, वे सुमन कल्याणपुर के गीतों के शौकीन जरूर रहे हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक अल्हड़पन है, शोखी है और चंचलता है, और है देसीपन जो हर श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

गीत के बोल में चाहे प्यार की गहराई हो या पश्चिमी धुन पर थिरकता शरारती गीत या फिर शास्त्रीय संगीत का लोच हो, हर तरह से खरी उतरती है उनकी आवाज और यही उनके गायन की विशेषता है। मन में

0: सुमन कल्याणपुर के हिंदी फिल्मी गायन का सफर शुरू हुआ फिल्म मंगू से। बोल थे कोई पुकारे धीरे, जिसके संगीतकार थे मोहम्मद शफी। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मराठी गीत गाए थे। फिल्म मंगू से जब सुमन कल्याणपुर ने फिल्मी गीतों के विशाल आंगन में कदम रखा तो छत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी सीढ़ियां तलाशनी पड़ी, काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज उनकी आवाज को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है।
1: अपने

सुमन कल्याणपुर अपने विवाह के पूर्व सुमन हेमाड़ी के नाम से गाती थी। उनका जन्म 28 जनवरी सन 1937 को बंगाल के ढाका में हुआ था, लेकिन संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने मुंबई में हासिल की। आइए सुने सुमन कल्याणपुर की गाई एक लोरी, जिसमें माँ की ममता है, दुलार है, स्नेह है और है सूरज की रश्मियों की तरह फैल जाने वाली रोशनी।

गीत हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोगों के जुबां पर गुनगुनाए जाते हैं। प्रेम की गहराई में डूबा मन हो या किसी के विछोह में आखुल मन, किसी का इंतजार हो या किसी से मिलन की घड़ी, हर ऐसे वक्त में सुमन कल्याणपुर के गाए गीत उनका साथ निभाते हैं। हर ऐसे वक्त में उनकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं सुमन कल्याणपुर के गाए गीत।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: रायपुर केंद्र है, सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए सड़क हादसे में भिलाई के 4 लोगों समेत 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए आज मतदान चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर करीब 1,02,800 मतदाता वोट डालेंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

0: से कराया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मत पेटी के माध्यम से हो रहा है। पंचायत चुनाव की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के इस अभियान का आयोजन 30 जून तक किया जाएगा। अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला स्तर पर कृषक संगोष्ठी, कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव तथा प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी देंगे। अभियान के दौरान किसानों को अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भिलाई के चंद्राकर परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा साच पास मार्ग पर हुआ, जहां पर्यटकों से भरी एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों में भिलाई मूल के एक दंपति और उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह परिवार बेंगलुरु में रह रहा था। जानकारी के अनुसार दो परिवार डलहौजी से साच पास घूमने गए थे। वाहन के वापस नहीं लौटने पर जीपीएस के माध्यम से उसका पता लगाया गया। पुलिस और प्रशासन ने राहत अभियान चलाकर सभी शवों को बाहर निकाला। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सामाजिक समरसता, सादगी और सकारात्मक मूल्यों को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन रही है। इस अवसर पर बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू भी सामूहिक विवाह समारोह में वैवाहिक बंधन में बंधे। उनकी बारात पारंपरिक बैलगाड़ी में निकाली गई, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रही। इस बैलगाड़ी के सारथी उप मुख्यमंत्री अरुण साव बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए सादगीपूर्ण विवाह करना और बैलगाड़ी में बारात निकालना समाज के लिए प्रेरणादायी संदेश है। उन्होंने कहा कि यह हमारी लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है तथा नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख देता है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं आकाशीय बिजली भी गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके चलते तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गांव में अमराई यानी आम के बगीचे लगाने की परंपरा को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आम का विशेष महत्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए सड़क हादसे में भिलाई के 4 लोगों समेत 8 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं फोन इन पर आधारित कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रस्तुति है मेरी यानी कि अंशुल गुलकरी की।

0: खेत खार मा सुख गे डबरा, माटी हावय पागी। लू के झोंका देथे तरिया, हरियर रुख डार ह सुखाए। मयारू माटी के मड़ई मा पसीना छुही छुही बहाय। तोरोई कद्दू औ कुम्हड़ा ह सुखगे डारा पाता, तियरी माटी मा चुरत हे जैसे भुनत हे आटा। चिरई चुरगुन हा पानी खोजत, उड़त गगन के छोर। तोर मोर सुघर छत्तीसगढ़ मा पड़गे गर्मी के जोर, पड़गे गर्मी के जोर। यही कविता के संग मैं आप मन के साथी अंशुल गुलकरी स्वागत करत हूँ आप जम्मो संगवारी मन के कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में। राम राम जय जोहार। संगी होवा देखन आज कौन कौन हमन ला फोन करे है और का बात करे है, तो आवा चलिन आप मन के मायारू कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत मा। कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में अपन के स्वागत है। कौन बोलत है जी?
1: हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम।
0: राम राम, नावला बता देव भैया।
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमे तरले नारायण प्रसाद वर्मा बोलत हूँ भैया।
0: और नारायण प्रसाद जी का हाल चाल है आप मन के?
1: और बने बने आवन भैया। ये देख अभी ग्रीष्म कालीन जोताई चलत हवा खेत के, और साफ सफाई ही में लगे हवन भैया अगले दे अवैया फसल के तैयारी में। कांटा खूंटिल बीनत हन भैया, मेड़ पार के तैयारी करत हवन, डबला डबरा डीलवल पार के बरोबर खन खुना के भैया जोताई करके।
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ भैया, यही काम में लगे हवन।
0: और एक अलावा आपन के का काम बुता है भैया?
1: मोर किराना दुकान है भैया, वही में बैठे रहता हूँ। और कृषि केंद्र घलो हाँ भैया, दू ठन है दुकान।
0: अरे वाह,
1: यही में बैठे बैठे आपके जम्मो कार्यक्रम ला सुनत रिथन।
0: अरे वाह,
1: मन के जिन माया है तेनोल हमन गुनत रिथन भैया, बचात रिथन, तो बढ़िया हमन आनंद लगते भैया आप मन के माया दुलार ला देख के।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: अभी गर्मी घलो बने चलत भैया, काल थोड़ का दे पानी गिरी सावत, कुछ शांत है भैया गर्मी है।
0: अब आप मंडहर पानी वानी के व्यवस्था कैसे का है भैया?
1: भैया हमारे यहाँ तो नहीं है पानी वानी, बहुत तकलीफ है भैया। तरिया मन भी सुख सुख गए है, जानवर मन ला भी धोए मांजे बर पानी नहीं है। हाँ भैया, और पानी का है भैया हमारे यहाँ के जितना भी बोर के पानी है ना, पीने योग्य नहीं है भैया, बहुत नमकीन टाइप के है भैया, पिए में थोड़ा से तकलीफ होते पेट वगैरह में।
0: अच्छा, कैसे करता फिर पानी पिए के?
1: अब का करें भैया, वही ले पीले था न, कुछ नदिया पानी चलते तो ओलापन पिए बार मिल जाते भैया नदिया पानी के। नल जल वाला भैया?
0: अच्छा,
1: से आपसे नल जल वाला?
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ, तो वही मसब के गुंजाई चल जाते भैया, पिए अपन खाए पिए बार।
0: अच्छा,
1: बाकी यही मगुंजाई से भैया है ना, तरिया मन भी सुखा सुखा गए, का करबो भैया, चले थे धीरे बांधे
0: अपने। तो तालाब के खंती अंती नहीं हो रही थी का?
1: हाँ भैया, अभी एक आध ठो तालाब में चलत है, हमारे यहाँ दो तीन ठो तालाब है। हाँ तो भैया चला था वही मैम, वही वाला भैया राम जी राम वाला मरेगा जो है। हाँ हाँ भैया।
0: अच्छा चलो, तो नारायण भैया अपन अपन स्वास्थ्य के चेत रखिया।
1: हाँ भैया,
0: है ना, और इसे बेरा बखत में फोन करत रहिए।
1: हाँ,
0: तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम में अपन फोन लगाए तेखर से ती अपन के गाड़ा गाड़ा धन्यवाद भैया।
1: धन्यवाद भैया, आप ला मीच मीच जो छाए हमर मेरा।
0: हाँ, राम राम भैया। हेलो
2: हेलो,
0: कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में अपन के स्वागत है। कौन बोलत है भैया?
2: अंशुल जी बोलत होगा आप में?
0: अंशुल बोलत हूँ, आपन कौन बोलत है जी?
2: मैं रामचंद माखिया काफिर भाई बोलत हूँ, बनिया पर धनतरे ले भैया।
0: रामचंद जी, कार्यक्रम में अपन के बहुत बहुत स्वागत है भैया।
2: हाँ
0: हाँ, बताओ भैया, पानी ने गिरीस की निकल?
2: पानी तो जबरदस्त गिरे भैया, हवा हवा चली पहले तो बढ़िया, रात के तो पंखा में काम चली, एसी कूलर की
0: जरूरत नहीं पड़ी, ठंडा हो गया रही सिर तो उन कहा था अपन। पूरा जम्मू छत्तीसगढ़ में ऐसे लगा था कि पानी गिरे से करके।
2: हाँ भैया, सब जगह गिरे है, और आपके रेडियो में भी बताते हैं उपग्रह द्वारा कि 1 जून से हमार केरल धार से छत्तीसगढ़ में पानी आ सके मानसून।
0: हाँ हाँ हाँ, सिर तो कहा था।
2: हाँ, पहले हमारे बचपन में सुनते रहे बम्बई में पानी गिरी तब रहा रही छत्तीसगढ़ में, वो टाइम में एमपी ही।
0: अच्छा,
2: अब वैज्ञानिक मान में आ गए जी छत्तीसगढ़ राज्य में, तो तकनीक से मालूम पड़ जाते।
0: हमर भारत सरकार ह बहुत सारा उपग्रह छोड़े है, तेखर से अपन ला पता चल जाते कि कब पानी गिरी और कब पानी नहीं गिरी।
2: हाँ भैया, पहले मन के सियान मन खेती किसानी में जाए तो हवा के रुख से उमस से गर्मी से ठंड से समझ जाए कि अब कौन डाल पानी आई, गर्मी हुई कि का हुई।

0: मन पड़ जाए भाई।
1: सिर तोन कहा था, बादल अदला देख दाग करके वो मन बता देते रही कि पानी गिरी कि नहीं गिरी करके।
0: हाँ, और हवा के रुख से भी जान
1: हवा के
0: रुख। मन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पूरा तो अभी निकले। हमारे इतिहास जो है हमारे भारत के बहुत प्राचीन है भैया।
1: फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके सर, वंदे मातरम भाई।
1: वंदे मातरम। कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत जारी रही। तेखर पहली आवाज सुन लेथन राजकुमार निर्मलकर और साथी मन के आवाज मा ए सुघर कन गीत ला।

0: मन के कार्यक्रम में गाड़ा गाड़ा स्वागत है। बतावा का काम बुता चालू है?
1: बस ये थोड़ा सा चला थे काम बुता।
0: हाँ हाँ,
1: गर्मी के छुट्टी चला थे।
0: अच्छा, का काम बुता करता जी आप मन?
1: मैं हाँ मास्टर हाँ पढ़ाता हूँ स्कूल में।
0: अरे वाह, कौन स्कूल जाता भैया आप मन?
1: मैं जाता हूँ भैया सूरजपुर जिला में है पोस्टिंग। हाँ
0: अच्छा।
1: हाँ हाँ, तो अभी गर्मी के छुट्टी में तो गाँव आए हूँ।
0: हाँ,
1: तो आप मन के कार्यक्रम को बहुत सुनता मैं रेडियो में।
0: अरे वाह बढ़िया,
1: तो आप मन के पसंद से कोई भी गीत सुना देवा।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल। आपन कौन विषय पढ़ाता भैया?
1: हम विज्ञान विषय।
0: अरे वाह, कौन कक्षा ला?
1: कक्षा छठवीं से आठवीं क्लास।
0: कब हो रही से भैया पोस्टिंग आप मन के?
1: हमार पोस्टिंग है 2021 में हो रही से।
0: 2021 में तेखर बाद ले अभी काम चला थे सूरजपुर में।
1: हाँ सूरजपुर। अच्छा। अभी चला थे भी।
0: अच्छा, कैसे जिला है?
1: बहुत बहुत बढ़िया जिला है।
0: हाँ हाँ,
1: बहुत वहाँ साफ सफाई, वहाँ के लोगन मन के व्यवहार बातचीत बहुत बढ़िया लगते वहाँ। बहुत सुंदर जिला है।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया।
1: वाह, बहुत शांत वातावरण है के माहौल भी।
0: कतका दूरिया है भैया सूरजपुर हमर डहर ले?
1: यहाँ बिलासपुर ले पड़ते सूरजपुर, लगभग लगभग पड़ जाते 200 किलोमीटर।
0: अच्छा 200 किलोमीटर। और जाया के रद्दा कैसे है?
1: जाया के रास्ता बढ़िया बन गए अब।
0: अच्छा,
1: वहाँ तक रोड बन गए है सूरजपुर तक।
0: अच्छा, तो ट्रेन हवे?
1: हाँ ट्रेन रूट भी हवा है।
0: अच्छा,
1: बस भी चलते 24 घंटा बिलासपुर ले।
0: अच्छा, तो भैया ऐसे बेरा बखत में फोन करत रही है, वो अपन से बढ़िया बात करे हैं, तेखर से बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप मन के।
1: हाँ आप तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राम राम। हेलो
2: हेलो,
0: कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में अपन के स्वागत है। कौन बोलत है जी?
2: मैं विजय कुमार साहू बोलत हूँ।
0: विजय भैया कार्यक्रम में अपन के स्वागत है, कहाँ ले बोलत हस?
2: मैं सीपत से बोलत हूँ, मोर छोटे से कृषि केंद्र है।
0: और एकर अलावा वो का काम बोलता है भैया अपन के?
2: बस यही में व्यस्त रहता हूँ सर।
0: और खेती किसानी हवे अपन के?
2: हाँ खेती किसानी भी है।
0: अच्छा, तो ये सीपत में हवे की और कोनो डहर कोनो?
2: सीपत से 5 किलोमीटर दूर गांव मछखंडा है।
0: अच्छा,
2: जहाँ खेती भी करता हूँ और साथ में कृषि केंद्र भी है।
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह।
2: हाँ,
0: तो अभी अपन डहर कैसे मौसम कैसे का है भैया?
2: आज तो धूप है, कल पानी गिरे रही थे, तो कल तो बढ़िया बारिश हो रही थी, शायद अब मौसम आने वाला है।
0: तो सीपत में भैया तालाब वालाब हवे की नहीं?
2: हवा है, बढ़िया बढ़िया तालाब है यहाँ।
0: अच्छा।
2: हाँ,
0: तो पानी वानी भरा है वहाँ?
2: हाँ पानी हवा है, अभी काम भी चल रहे थे, मतलब किनारे किनारे सफाई वगैरह। हाँ, कुछ बड़े डैम वगैरह बनाए के प्लानिंग चले थे।
0: अच्छा।
2: हाँ,
0: तो वीबीजी राम जी योजना तहत वहाँ काम चला थे कि नहीं, जिन्हें पहले मनरेगा रही से?
2: हाँ मनरेगा के तहत भी काम चले थे।
0: अच्छा, तो आपन अपन योगदान देते रहे था कि नहीं वहाँ?
2: नहीं नहीं, मैं कृषि केंद्र।
0: अच्छा, अपन कृषि केंद्र में अपन
2: अब हमारे सीजन आगे है
0: भैया। अभी पेपर पर मैं पढ़ते रहे हूँ कि खाद के कमी हो जाते, तो कतका सच्चाई है भैया?
2: कमी तो रही, मगर ऐसे के अब सब पहली किसान मन डाले है। कोनो एकड़ में 2 बोरी, कोनो 3 बोरी, और गवर्नमेंट अभी अलग अलग लाट में दी।
0: अच्छा,
2: तो अब व्यवस्था थोड़ा सा, मतलब शासन तो व्यवस्था बनाए के है
0: प्रयास करत है,
2: किसान ला एक बार ले जाए में सुविधा है।
0: हाँ हाँ हाँ, ठीक है विजय भैया, अपन संग बढ़िया बात करे हन, और अपन बढ़िया फोरिया फोरिया के हमारे प्रश्न के जवाब ला दे है, तेखर से अपन के बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
0: इसने बेरा बखत में फोन करत रही है भैया। राम राम, जय जोहार।
2: जय जोहार।
0: हेलो।
3: जय राम भैया।
0: राम राम, कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में अपन के स्वागत है। कौन बोलत है जी?
3: अंशुल भैया बोलत सबका।
0: अंशुल बोलत हूँ जी।
3: हाँ रोशन जवान बोलत भैया बिलाईगढ़ ले।
0: रोशन भैया कार्यक्रम में अपन के गाड़ा गाड़ा स्वागत है, आओ बतावा भैया का हाल चाल है अपन के?
3: बस बढ़िया है भैया, गर्मी का आनंद लेते हैं खूब।
0: हाँ
3: हाँ, 45 डिग्री हो जाते है, कल तो गर्म तो आ रही थे, रात के थोड़ा बहुत बारिश हुई थे घर में, बराबर फिर घाम हुआ फिर गर्म थे।
0: हाँ हाँ हाँ, पर रात में कल कूलर एसी की जरूरत नहीं पड़ी से, पंखा में काम हो जाते रही से कल।
3: हाँ हाँ भैया हो जाए
0: है ना।
3: हाँ,
0: बढ़िया।
3: हाँ, हाँ।
0: और रोशन भैया सुनावा, बहुत दिन बाद अपन सब बात होते।
3: हाँ हाँ भैया, लगा रहा था बीच बीच में तो नहीं रहा, गाने आने में रहेगा।
0: और बताओ भैया कैसे चले थे काम बुता अपन के?
3: बोले चले थे काम बुता का, हमारे तो 12 महीना काम है, और काम दाम के फर्क नहीं पड़े, घर में लगे है लूम।
0: हाँ
3: और जो को बेर का काम कर कोई है नहीं, टेंशन नहीं है कछु।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: जैसे कमाते हैं उसके पैसा मिलेगा।
0: हाँ, जैसे काम करबे ओकर बढ़िया हिसाब से पैसा मिली।
3: हाँ हाँ,
0: है कि नहीं। और घर में लड़का वही सब बढ़िया?
3: हाँ सब बढ़िया भैया।
0: और पानी वानी की व्यवस्था सब हवे बढ़िया ले?
3: हाँ पानी की व्यवस्था हवे हमारे यहाँ, वो पानी नल जल।

0: हेलो
1: हेलो।
0: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत मापन के स्वागत है। कौन बोलत है जी?
1: मैं बिलासपुर से बोला था अखिलेश।
0: अखिलेश भैया राम राम।

0: वाला पानी टंकी दूर दूर में हवे तो हमारे मोहल्ला में एक बोरिंग है ना, बोर करके ना सब घर 4 इंची पाइप बिछा के ना वही में चलते मन के निस्तार पानी के।
1: अच्छा
0: हाँ हाँ
1: ठीक ठीक ठीक तो ये ला पंचायत दहार ले बोर करवाए है कि आप मन करवाए हा?
0: नहीं वो सरकारी है, बहुत पहले की बोरिंग रही सब।
1: अच्छा
0: आप अपने दिन हो गए 7-8 साल हो गए ना बोर फिट करके ना पूरा मोहल्ला पर बिछाए प्लास्टिक के पाइप ला नगर पंचायत बिछा है।
1: अच्छा
0: वो में कनेक्शन दिए गए सब ला चालू करते बिहना कर 11 बजे तक फिर शाम के फिर चालू करे फिर चलते 8-9 बजे रात ला।
1: अच्छा
0: हाँ चलता से बढ़िया वहाँ।
1: अच्छा
0: और जो खराब वराब होते ना तो मिलजुल के बनाते ना लगा नगर वाला बनाते था मन बूता काम करे लगते जागो करा। हाँ
1: बढ़िया बढ़िया तो पानी के व्यर्थ थोड़ी ना करता भैया।
0: नहीं करन भैया व्यर्थ काबो कर पोगा टंकी बनाए घर में।
1: हाँ
0: अब पानी चलते तो हम भर रखे रहते उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया करते भैया आप मन।
0: हाँ हाँ हाँ
1: ठीक है रोशन भैया स्वास्थ्य स्वास्थ्य बढ़िया भैया।
0: हाँ सब बढ़िया है
1: सब बढ़िया ठीक है रोशन भैया इसे बेरा बखत में अपन फोन करत रही है बढ़िया बात करे हैं तेखा से थी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ भैया धन्यवाद भैया
1: राम राम
0: राम राम जी।
1: हेलो
2: हेलो
1: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में अपन के स्वागत है कौन बोलत है जी।
2: सतिया पारा जुना बिलासपुर ले सुशील देवांगन बिलासपुर बोला था भैया राम राम।
1: सुशील भैया राम राम आओ सुनावा का हाल चाल है।
2: सब बने बने है
1: सब बने भाई सब बने बने है स्वास्थ्य स्वास्थ्य सब बढ़िया
2: सब बढ़िया है।
1: अरे वाह
2: कल सांझ के कद का पानी गिरिस भाई और कुछ ठंडा भैया
1: तापमान तक को कम हुई से नहीं अभी
2: अभी
1: थोड़कन अच्छा लगा थे बिल्कुल
2: घाम नहीं लगा थे
1: एकदम सिर तो कहा था भैया
2: मस्त है अंशुल भाई।
1: अब अपन के काम बुद्ध कैसे चला थे भैया
2: काम धाम चला थे भैया
1: काम धाम चला थे
2: धीरे धीरे अब तो साइकिल के जमाना गए मोटरसाइकिल के जमाना आ गए
1: बिल्कुल
2: घरे घर 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल हो गए। हमारे साइकिल के काम हर कम हो गए
1: कम हो गए बच्चे कुछ कसर है बैटरी वाली गाड़ी ले डारे से
2: बैटरी वाला।
1: हाँ
2: तो बैटरी वाला कार आ गया भैया
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: अक्का यानी कि हमारे भारत देश सर तरक्की कर डाली जेकर सीमा नहीं है
1: बिल्कुल
2: भारत देश महान है
1: बिल्कुल सर तो उनका था भैया
2: बहुत बढ़िया है हमारे भारत देश जी हमन जन्मे हन ओका हमन बारम्बार प्रणाम करत हन भारत माता का हमारे देश बहुत शानदार है और बहुत बढ़िया चलत है हमारे देश सर।
1: हाँ हाँ
2: हाँ तो आप मन के कार्यक्रम का सुनत रही थन आपके ईमेल का सुनथन आप मन के गीत सुनथन
1: अरे वाह
2: आपकी पसंद सुनथन माटी के स्वर है कतका कर हमारा आकाशवाणी बिलासपुर कार्यक्रम है एकदम नीक लागत रही थी दिन भर सुनत रही थन किसान वाणी सुनथन किसान के दिन बात होते
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: बोल सुनथन भैया।
1: हाँ हाँ
2: और बहुत तो खैर हमारे पास तो खेती नहीं है लेकिन सुने मना अति आनंद आते है हमारे जतका कंपियर साथी है ना।
1: हाँ हाँ
2: वाणी के
1: हाँ हाँ हाँ
2: बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताते है
1: बिल्कुल
2: और हमारे किसान भाई उही ला ध्यान में रख के आगु चल ही ना तो भारी सफलता में आप मन के जिन कार्यक्रम के प्रसारण है ना वो बहुत निक लागते गा
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो रेडियो भी ना नहीं रह सकन हम तो टीवी देखन नहीं।
1: अच्छा अरे वाह
2: रेडियो में जेन हमार ध्यान है ना कतका बेर का आही कतका बेर कैसे आही रेडियो हमार चालू रही थे।
1: अच्छा
2: हाँ
1: बढ़िया
2: हम बहुत दिन से भाग ले भैया है माँ
1: अपन तो जुन्ना श्रोता है हमार आकाशवाणी के
2: 1966 ले भाग लेवा था
1: बहुत बढ़िया
2: और हम ना रेडियो सिलोन में बहुत भाग लेवान रेडियो सिलोन में वाग गीतांजलि बदलते हुए साथी एक और अनेक हफ्ते के श्रोता रेडियो पत्रिका सब में भाग लेवान भैया वो सब जमाना में ऐसे बजा रेडियो सिलोन हर
1: हाँ हाँ
2: जैसे ही आस पास स्टेशन है अच्छा नीक आवाज आवा स्पष्ट रूप से चल बढ़िया बात हुई संसुल।
1: हाँ सुशील भैया बहुत बहुत धन्यवाद अपन फोन करे है
2: मतलब बहुत बहुत धन्यवाद राम राम
1: राम राम जय जोहर भैया। हेलो
3: हेलो
1: कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में आप मन के स्वागत है कौन बोलत है जी।
3: मैं बोला था कलेश्वर कुमार पवार जी पड़रिया।
1: और बताओ कंवर साहब का हाल चाल है।
3: सब बने बने हां जी
1: सब बने बने का काम बूता करता बढ़िया बढ़िया हमन तो बढ़िया का काम बूता करता जी
3: बस ते दे बाबा के खेती किसानी के दिन आ गए है
1: हां हां
3: वही खेती किसानी खेत मतलब साफ सफाई कांटा खूंटी बिनना है पत्थर वथरा
1: अच्छा

0: जा जा के देखा थन खातू बेचना है।
1: तो कतका एकड़ के थे?
0: अब हम तो छोटे किसान
1: अच्छा।
0: ढाई ढाई एकड़ है, ज्यादा नहीं है।
1: अच्छा तो, क्या लगा हब?
0: अब अभी तो बरसात बाद धान ही लगा था और बाड़ी भी चलते थोड़ा थोड़ा में, ज्यादा नहीं।
1: अच्छा
0: इसके लिए
1: हाँ हाँ हाँ। और एक अलावा और का काम होता है? कतका पढ़े हैं भैया?
0: एक दुकान भी हवा है, बड़े भैया रहते दुकान किराना दुकान में।
1: और आप मन की पढ़ाई भैया?
0: मोर पढ़ाई बीएससी फाइनल हो गए।

0: कार्यक्रम
1: धन्यवाद।
0: राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार।
0: हेलो, कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत मापन के स्वागत है। कौन बोलत है जी?
2: मैं रघुवीर पटेल बोलत हूँ, खगड़िया ले।
0: अब बताओ भैया, क्या हाल चाल है?
2: सब ठीक है।
0: सब ठीक है। काम
2: किसानी में बोल रहे
0: हूँ। और पढ़ाई लिखाई के कैसे का है आप मन के?
2: पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, वो वैकेंसी आते हैं, वो फॉर्म हम डालते हैं।
0: अच्छा, फॉर्म हम डाला रही था। तो अभी शिक्षक भर्ती के आप मन के तैयारी चलत है कि नहीं चलत है?
2: चलत है।
0: चलत है।
2: मैं दे रहे हैं, से दिला रहे हैं और आर्मी वगैरह में दिला रहे हैं।
0: अरे वाह, तो रघुवीर भैया बढ़िया अपन संग बढ़िया बात करे हन। राम राम, जय जोहार।
2: राम राम, जय जोहार।
0: कार्यक्रम में जात जात आवाज सुन लेन महादेव हिरवानी के आवाज में एक गीत ला।

कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत अब इहे सिरावत है। देवा अपन साथी अंशुल गुलकरीला कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत ले विदा। राम राम, जय जोहार।

कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत अभी हम सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। वक्त है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। कार्यक्रम आपकी पसंद का पहला फरमाइशी गीत है फिल्म बेटी बेटे से। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है शंकर जयकिशन का। इस गीत की पत्रों के माध्यम से हमें फरमाइश भेजने वालों के नाम हैं धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव, हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र और सुशील बेलसपुरिया, बेमितरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या और सुषमा सारथी, बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशु माला और आशुतोष अंगारे, ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय, अमित, अमीन, गिरीश, करण, युवान, ढाबेश यादव, हथबंध नेवधा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र, तुलेंद्र और देव कुमार, नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, जयप्रकाश, प्रीति, सिद्धांत, शौर्य, सानवी और इनका पूरा परिवार, ये हमारे साथी हैं कटघोरा चिरमिरी रोड कोरबा से, और पहारा अहिवारा दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अभी हमने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में बेटी बेटे फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भरत व्यास का लिखा हुआ, सतीश भाटिया के संगीत से सजा हुआ, सुमन कल्याणपुर की आवाजों में बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश हमें पत्रों के माध्यम से जिन्होंने भेजा है उनके नाम हैं शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, अशरफ अयाज अल्फैज, हजीरुन निशा सादिया खान, बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, ग्राम कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर ऋतु, डोमन यादव, रामशीला यादव, शांतिनगर भाटापारा से ही मिला उदास, कुलदीप, संतोष, संदीप, अजीत, कुलदीप, बिरजा, संजना और लक्की, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की।

रविंद्र, खुशी और रौनक सेन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिश का तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन। ग्राम बसीवार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद आंचल, चंचल चांदनी, विनय कुमार, वर्षा और मनोज कुमार कंवर। शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी आरती पूर्वा, प्रतिभा योगेश, निलेश चंद्रशेखर, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, ये हमारे साथी हैं लुतरा खमरिया से। आइए आप सब मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल बजाज। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मायाराम रजक, पुनेश्वर, फानेश्वर, मुकेश, हाव्या, टानिया रजक। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, चारणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू, चिंटू और युग कुमार झेरिया। भाटापारा से ही राम कुमार राउत, अमरीका, गणेश, कार्तिक, युवराज राउत। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमहर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी और निधि देवांगन। नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, मीनाक्षी, उमा, ठगिया देवी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा। भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक, झावेंद्र कुमार वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ यह गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है नसीब।

0: कार्यक्रम आपकी पसंद जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं बिलासपुर और उसके आसपास होने वाली यातायात संबंधित गतिविधियों के बारे में। ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर में।
1: सुप्रभात मित्रों, अपने शहर की, अपने गांव की, अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था जानने आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक रेडियो कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र से लेकर सभी ग्रामीण सड़कों में यह यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी इस सुगम यातायात व्यवस्था का लाभ उठाएं, किंतु यातायात नियमों को अपनाते हुए। मित्रों, सुगम और सुरक्षित यातायात में बाधक तत्वों में सड़कों में बेजा कब्जा प्रमुख है। ये समस्या शहर

0: कस्बा, गांव सभी जगह है। प्रायः सड़क गली आदि में लोग अपने घर या दुकान के सामने शासकीय जमीन में कब्जा कर बरामदा, मकान या दुकान की शेड आदि बनाकर सड़कों के बड़े भाग में कब्जा कर लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग मंदिर आदि के आड़ में भी सड़कों में बेजा कब्जा कर लेते हैं। अपने दुकान या घर के सामने मुख्य मार्ग से जोड़कर छोटा सा मंदिर या कोई धार्मिक स्थल बनाकर मंदिर के पीछे बड़े शासकीय भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं। इससे सड़कें संकीर्ण होती हैं, लोगों को आवागमन में या अन्य कार्यों में परेशानी होती है। सड़कों के संकीर्ण होने से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में लोग घायल होते हैं या मारे भी जाते हैं। इस सार्वजनिक समस्या से निदान हेतु शासन स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जाते हैं। इस अभियान के अंतर्गत कई बार बड़े बड़े पक्के निर्माण अर्थात दीवार मकान आदि एक्सीवेटर से धराशायी किया जाता है। जिले में इस समय बेजा कब्जा हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। आज भी जिले के कुछ स्थानों में बेजा कब्जा हटाया जा रहा है। बेजा कब्जा निवारण अभियान के दौरान तोड़फोड़ से संबंधितों को बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है, शासन को भी इससे क्षति होती है। अतः आप सभी से पुनः अनुरोध है, ऐसे असामाजिक कार्य से सर्वथा दूर रहें, ताकि कोई सड़क दुर्घटना का शिकार ना हो, कोई अकाल ना मारा जाए, यातायात भी सुगम हो। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: कार्यक्रम आपके पसंद में आइए, वापस चलते हैं और सुनते हैं राजा साहब फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। इस गाने की हमें पत्रों के माध्यम से फरमाइश मिली है दतरंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा की, हटौत बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश समीर, राजकुमारी पटेल, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा दामिनी वर्मा की, इंदिरानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम रजा, प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े ये हमारे साथी है, गौतम नगर जिला नांदेड़ से, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, भाटापारा से हमारे साथी हैं दान सिंह रावत, पद्मिनी शुभम सौरभ रावत, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला और अंतिम गीत। फिल्म का नाम है राजा साहब।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में राजा साहब फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद में। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11 बज रहे हैं, वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित

0: रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
0: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब आ रही है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
0: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोता, और रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा के विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
0: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
0: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
0: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
0: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
0: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
0: जी।

0: कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे? लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है
1: जी। प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं?
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।

0: जी, दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है। सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
1: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को

0: बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं?
1: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
0: जी,
1: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
0: जी,
1: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा सीआईटी एनसीईआरटी सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से सीआईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है
0: जी।
1: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर डीटीएच चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ के सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
0: जी
1: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
0: जी।
1: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
0: जी,
1: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
0: जी,
1: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
0: जी,
1: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
0: जी।
1: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
0: जी।
1: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
0: जी जी,
1: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
0: बिल्कुल
1: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
0: जी,
1: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
0: जी।
1: ये स्पर्शनीय टाइल बताती है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
0: जी।
1: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
0: जी।
1: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है, और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
0: जी।
1: तो ये भी एक हमारी पहल है
0: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
1: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईईटी के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
0: जी।
1: और एक और सरल उपाय है
0: जी,
1: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक सीआईटी एनसीईआरटी, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
0: जी।
1: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती है
0: जी।
1: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से

0: एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें

0: लगती हैं, जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनिक पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके। यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक और बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया एक सूचना सुनिए।

मिताली सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे कतील राजस्थानी का कलाम, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गजल राजकुमार रिजवी की आवाज में।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया हुआ ये गाना।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत अभियान शुरू हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए आज मतदान चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर करीब 1,02,800 मतदाता वोट डालेंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हो रहा है। पंचायत चुनावों की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने इस अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से एक व्यापक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गांव में अमराई यानी आम के बगीचे लगाने की परंपरा को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आम का विशेष महत्व है। महोत्सव में देश भर के 400 से अधिक किसानों ने आम

0: कि 250 किस्मों के लगभग 2000 प्रादर्श प्रदर्शित किए। इस दौरान आम की विभिन्न श्रेणियों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने धमतरी जिले में पुलिस की पाठशाला का लोकार्पण किया। पुलिस की पाठशाला में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। यह लाइब्रेरी उन गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों और पुस्तकों के अभाव में नहीं कर पाते। लोकार्पण अवसर पर पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने कहा कि यह पाठशाला शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज हवा चलने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने में होने वाली देरी के कारण जून के पहले पखवाड़े में हीट वेव चल सकती है। आने वाली नमी बस्तर में भारी गर्मी को रोकेगी मगर मध्य और उत्तरी इलाके पहले पखवाड़े में गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की रफ्तार कम हो रही है जिसकी वजह से उसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावित तारीख आगे खिसकती हुई नजर आ रही है। कांकेर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 32,60,000 रुपए से ज्यादा कीमत की चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल R.N. रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2

0: और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गायिका, मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर को। सुनते हैं आधी रात के बाद फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में। प्रेम धवन की रचना को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

0: आंधी और तूफान, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। और अब ये संदेश और उसके बाद एक और गीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों के महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आपस की बात का गाना सुमन कल्याणपुर के स्वर में। अनजान के बोलों को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।
4: कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक निहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
4: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
5: इससे आपको मतलब?
4: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
5: जी
4: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करेक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
5: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
4: ओह दैट्स फाइन। अच्छा ये बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बात।

0: अनजान का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आपस की बात का ये गाना आपने सुना, आवाज सुमन कल्याणपुर की थी।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: यह फिल्म अली बाबा और 40 चोर का गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ।

अंदाज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा का गाया हुआ हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था, जिसे संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चालाक का ये गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है गणेश का।

फिल्म अनजाना का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

पपीहा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा।

देखो देखा देख रहा था पपीहा देखो देख रहा था पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा भला।

0: पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा पपीहा देखो देख।
1: सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गाना आपने सुना फिल्म फरियाद से, बोल केदार शर्मा के थे और संगीत था स्नेहल भाटकर का। और अब आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सपारा है।

यादों के महफिल कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं नूर महल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल सबा अफगानी के हैं और संगीत है जानी बाबू कव्वाल का।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की बात और इस कार्यक्रम के गीत होते हैं बहुत खास, और आज भी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है। तो चलिए ना एक सुरीले सफर पर हमारे साथ। इस सुरीले सफर में आज की जो इबारत है वो हम बता देते हैं, खासतौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है फेसबुक पर इस इबारत को। इबारत कुछ इस तरह से है, उनका प्यार नहीं बटता चाहे दुनिया एक बटा दो हो जाए। वो सिखाते हैं गगन में उड़ते मस्त पंछी की तरह जीना, रोते रोते हंसना, दिल की गिरह खोल कर बाहर से अंदर तक दुनिया को समझना। उनके होठों पर बड़ा नाम करेगा या राज करेगी जैसी दुआएं रहती हैं, मुड़ के ना देखो या चुनरी संभालो जैसी उनकी हिदायतें जिंदगी भर साथ रहती हैं, याद रहती हैं। याद आती है उनकी सुनाई हंसों की कहानी, और गुजरते जाते हैं दिन महीने साल, हम सीख जाते हैं साथी का साथ देना। खुश रंग हिना की खुशबू लेकर डोलती पवनिया से दिल का संदेश कहना, उनका हाथ लगते ही बिगड़ता काम बन गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है?

वैसे आखिरी लाइन तो एक हिंट थी आपको ये जान बताने के लिए, जानने के लिए कि देखिए आज आपने इस कार्यक्रम की क्या में क्या बातें होने वाली हैं उन्हें समझा है या नहीं, या ये इबारत किस ओर इशारा कर रही है। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे सभी श्रोताओं ने जल्दी से जल्दी इस थीम को पहचान लिया। हाँ, आज विश्व अभिभावक दिवस है और इसीलिए बातें हो रही हैं उन अभिभावकों की, माता पिता की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं, सच कहूँ तो माँ पापा का प्यार ऐसा खजाना है जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ पापा का प्यार हमारे साथ खड़ा रहता है। उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। उनके जैसा चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ पापा का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उनकी हर चिंता, हर दुआ और हर त्याग में दिखाई देता है। क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आज के कई गाने हम समझ गए हैं और वो गीत हम विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं, पर बताएंगे नहीं। जो गीत सही होगा उस समय बता देंगे, सच ही कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिका के साथ एक सखी भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अनमोल दोस्ती होती है ये, जब इस तरह से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप झट से समझ लेते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि वो तमाम गाने बताए हैं जिन जिन पर आज की ये इबारत रची गई है। और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि सारे गाने तो इबारत में ही छुपे हैं और एक एक गाना उनको समझ में आ गया है। क्या बात है। तो भाई ये गाना आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज आपकी पसंद के सारे गाने आ रहे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश को बहुत ही सुंदर भावों से सजाया है और शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह, क्या बात। एक और श्रोता कह रही है कि कहीं पढ़ा था बच्चे को मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियां यहाँ साझा कर रही हूँ। क्या सीरत, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है। वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं। उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी बढ़ता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ा रहता है। वे हमें जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना और सही राह पर चलना सिखाते हैं। उनकी दुआएं, सीख और हिदायतें उम्र भर हमारा संबल बनी रहती हैं। उनके स्नेहिल स्पर्श में ऐसा विश्वास होता है कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अनमोल छाया है जिनकी याद, सीख और प्रेम हर दिन हमारा मार्ग रोशन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने। और अब हम सुनवा रहे हैं ये गाना, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। और हाँ,

बिल्कुल सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाजें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेमनाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बढ़ता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बढ़ता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफर शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफर पूरा करना।

हैं, इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है, भाई कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

आज से कयामत तक फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज में, और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तुरंत बताया कि फिल्म में आमिर खान इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी हैं। एक श्रोता ने बताया है कि मेरी धुलाई 8वीं तक बहुत हुई है, खासकर तब जब गणित के सवाल नहीं बनते थे। पर जब 9वीं कक्षा में आई तो पापा ने एक दिन मेरे दोनों भाइयों और माँ को खास तौर पर बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए, है ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं, और वे अपने वैश्विक परिवार को वट वृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुहृद के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। वह आपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो होते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं, और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं, और माता पिता से ज्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया, अगर आपको याद हो आ रहा हो तो जरूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो पिटाई भी बहुत प्यारी होती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से। संदेश मिला एक श्रोता का, कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नजारा देखने मिला, तब से पंछी बनू उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, VBS के साथ साथ गुजर जाए हर दिन, दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथी मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर। आज की इबारत यही इंगित कर रही है कि जिंदगी का सब कुछ सीखने व सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है। आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता है। इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे। और अब एक गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम क्या है और ये कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं।

0: हमारे साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी। अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए जरूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है। मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिए। उस समय गणित कमजोर था, 2 झपटे ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए। तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए। वाह, क्या बात है। एक और श्रोता बता रही है कि बचपन में माँ की साड़ी पहन के खूब खेल कूद कर गंदी करके रख दी, और जब माँ ने 3-4 तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो। एक और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने ही बड़ा किया है और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा। आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। उनकी जरा भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सच ऐसा ही होता है। एक और श्रोता ने बताया है कि शैतानियां तो बहुत होती थी, पर इन शैतानियों का सरताज भैया रहता था। बेचारा भैया को ही पड़ जाता था। माँ कभी किसी को नहीं मारती थी, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। उसके उस इमोशनल ब्लैकमेल के डर के मारे हम अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते थे। बोलती थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरे मुंह से खून निकल आएगा। पता नहीं कैसे माँ समझ जाती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो मुंह में कुछ लाल रंग का चीज डालकर दिखा देती थी कि मेरे मुंह से लाल खून जैसा कुछ है, और हम भाई बहन डर के मारे उसे पकड़ के रोने लगते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे। पिताजी गुस्सैल थे पर हम लड़कियों को कभी नहीं मारते थे। इसी जून में 2 साल पहले माँ भी चली गई। इन सब बातों को याद करके मन थोड़ा भावुक भी हो रहा है। बिल्कुल हो जाता है।

एक और साथी बता रहे हैं कि हम लोग अपने पिताजी से बहुत डरते थे, उनका रौब घर में था, हमारी बुआ चाचा भी उनसे डरते थे, डांटने पर कभी भी उलट कर जवाब नहीं देते थे, माँ से हर तरह से बात कर लेते थे। हम लोगों की बहुत सी गलतियों के कारण हमारी माँ भी डांट खा जाती थी। अब माता पिता कोई नहीं है, अब कोई डांटने वाला नहीं है। सच, ये बात बहुत कसकती है। एक श्रोता ने कहा है कि इबारत भावनापूर्ण पारिवारिक रिश्तों को चित्रित करती है और हमें बचपन के गलियारों की सैर कराती है। सही है, माता पिता और पारिवारिक संरक्षण ही शैशव काल से उत्तरार्ध तक बौद्धिक शारीरिक नैतिक विकास में सहायक होता है। पुराने काल के संयुक्त परिवार बहुमुखी विकास का मुख्य कारक होता था, जहां चाचा चाची ताऊ ताई बुआ सभी के सानिध्य में बचपन गुजरता था। अब एकाकी परिवार का चलन और एक या दो बच्चों में सीमित परिवार रह गया है। भविष्य में मौसा मौसी बुआ शब्द शब्दकोश से लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बहुत भावुक विषय पर इबारत है। हाँ, है तो बहुत दिल को छूने वाली बात। तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं। बताइए कि आवाज किनकी है और संगीतकार कौन है।

0: रोते रोते।
1: जवाब आया, हमारे श्रोताओं ने बताया। अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश जब आए हैं तो पिटाई की बातें भी आई हैं। हमारे एक श्रोता ने कह रही हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। भाई हम लोग तो बिना मार खाए समझते ही नहीं थे। नई पीढ़ी को ये बात संभवतः अजीब ही लगे, पर इतनी मार डांट के बाद भी प्यार भी तो सबसे अधिक करते हैं। माँ पिता जैसा और कोई नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता कह रही है कि शादी के बाद माता पिता के साथ सास ससुर भी हमारे अभिभावक होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम बोला जाता है। तो आप बताइए ना, कुछ अगर आपके पास कोई अनुभव हो या उनसे जुड़ी कोई बात हो, उनके प्यार का कोई खास पल आपने अगर जिया हो तो उसे हमारे साथ भी साझा करिए। एक संदेश में कहा है कि पांचवीं कक्षा में एक बार स्कूल से छुट्टी होते ही सहेली के घर चले गए थे। उस समय इस बात का अनुमान नहीं था कि घर पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता बढ़ने पर पापा जी स्कूल पहुंचे तो पता चला सब बच्चे चले गए हैं। 2 घंटे बाद जब घर पहुंचे तो माँ का गुस्सा पिटाई के रूप में मिला। थोड़ी देर बाद पापा जी भी घर आए। उन्होंने प्यार से समझाया कि पहले घर आओ फिर बता कर जाओ। ऐसा खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक धक धक होती है जब पिटाई होने वाली होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो बड़ी ही प्यारी होती है। एक श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देखकर ही रो देते थे। जब कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे, हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारी वजह से इसे डांट भी नहीं सकते। और कभी कभी जब हम शिकायत करते कि इसने रेडियो फेंक दिया, वो खराब हो गया, तो पापा कहते तुम बताओ हम क्या करें। एक श्रोता ने लिखा है कि मायके में माता पिता का साथ एक बेटी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संबल और सुरक्षा कवच होता है। ये वो सुरक्षित कोना है जहां बिना किसी शर्त के प्रेम, निस्वार्थ सहयोग और बचपन जैसी बेफिक्री मिलती है। मायके में माता पिता के सानिध्य के मुख्य पहलू, विवाह के बाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में माता पिता की मौजूदगी एक ढाल की तरह काम करती है। सही बात है, उनके पास बिताया गया समय मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने कहा है कि इंसान को पक्षियों की तरह उन्मुक्त होकर जीने, वर्तमान में रहने और प्रकृति के करीब रहने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं जीते, वे आज के हर पल का आनंद लेते हैं। इसलिए इंसान भी भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। पक्षियों ने कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते हैं। तनाव मुक्त रहने और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का नजरिया पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अभिनेता कौन है।

फिल्म रात और दिन का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नजर आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ खजाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है, और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें जरूर बताएं। एक श्रोता लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि मार के डर से ही डरे, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खाकर रोते थे, इतना रोते थे कि चुप कराने के लिए भी मार खाने के बाद चुप होते थे। क्या बात है। इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी के मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता हमें परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है, कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं, तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बना देता है। एक श्रोता ने बताया है

कि हम जब मुंबई में रहते थे फोर्थ क्लास में था तो एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेन रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कार टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो टैक्सी ड्राइवर अंकल जी बहुत डरे हुए थे, वैसे गलती मेरी थी, दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, हम छोड़ दें, मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज, मम्मी बहुत डांटेगी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊंगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना का पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खुद ही रोने लगी, कहीं मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। ये होता है माँ का प्यार, और मैं डर रहा था। तो अब वो खजाने वाली बात अगर याद आ रही हो तो जरूर बताएं, और बताएं कि इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं।

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। आशा भोसले और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाजों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि वोल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे में भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है। कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं। ये भी जीवन का आनंद है, छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए। झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहां माँ के आंचल की छांव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और मजा है। तो चलिए, आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। तो अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थीं।

फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, और सही जवाब आ गया, आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। संदेश मिला है कि हमारी श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताजा हुई मुड़ मुड़ के न देख, गाना सुनकर हमारे एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम उनसे हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था, वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार कौन है।

खजाना ढूंढने की बात को लेकर हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक बार हमारे नाना जी जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए। माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था, बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

फिल्म अवतार का गाना राजेश खन्ना, शबाना आजमी प्रमुख भूमिकाओं में थे। आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो कुछ संदेश जल्दी से। ना कोई दौलत ना कोई खजाना चाहिए।

बस माता पिता का प्यार पुराना चाहिए, सारी खुशियां मिल जाती हैं जीवन में जब उनका आशीर्वाद सिरहाना चाहिए। क्या बात है। दूध दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज सुबह आधा लीटर दूध केसर डालकर पीजिए और 5 किलोमीटर लंबी यात्रा कीजिए। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर संदेशों के लिए। हाँ, समय की कमी के चलते हम बहुत से संदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर संदेश हैं और इन्हीं संदेशों के बीच में हमने ढूंढ लिया है प्यार और माता पिता का वो समर्पण और त्याग। तो अब इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डीजे राजू को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आज है विश्व दूध दिवस। दूध की उपयोगिता और महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिन दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में मनाया जाता है। दूध के विषय पर सोचना शुरू करते ही यकायक मैथिली शरण गुप्त की रचना याद आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है आंचल में दूध और आंखों में पानी। भले ही साथियों आज नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, लेकिन ये भी तो सच है कि नारी हर दुख हर दर्द को पीकर पूरे घर को समृद्ध करती है। अपने रक्त को दूध में परिवर्तित कर एक माँ अपने संतान को पिलाती है, उसे जीवन दान देती है।

हालांकि 1 जून यानी कि आज के दिन विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, पर भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, वही कुरियन साहब जिन्होंने भारत में सफेद क्रांति ला दी थी अपने ऑपरेशन फ्लड के नाम से, यानी कि दुग्ध विकास मिशन के माध्यम से। इस क्रांति ने केवल देश भर में दूध की उपलब्धता को आशातीत रूप से बढ़ावा ही नहीं, बल्कि बच्चों में कुपोषण को भी कम कर दिया और साथ ही साथ लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दिया।

आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए दिन में एक गिलास दूध भी किसी विलास से कम नहीं। सरकार की तरफ से कुपोषण के खिलाफ कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे, आखिर कौन सा कदम सफल हो सकता है? हम जागरूक रहे और कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा सबसे बेहतर योगदान दे। हमारे लिए जितना भी संभव हो, हम उन कुपोषित बच्चों को दूध पिलाकर उनका कुपोषण दूर करने में अपना योगदान दें।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी

0: सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू

0: किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू।

0: भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अपनी सुरीली आवाज की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की आवाज, साथ में मोहम्मद रफी, बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के स्वरों में, शैलेंद्र की रचना थी और सलिल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से संवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

0: हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम। आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।
1: कह दिए हो शुमे।

0: प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाएगा ठहरिए होश में।
1: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी हैं मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी
1: हूँ। हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत तो की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हो आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ, लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छी गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते हैं। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए। वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला

0: गया है,
1: बिल्कुल सही
0: ऐसा
1: बात है,
0: महसूस होता
1: बिल्कुल सही बात
0: है ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका, जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया, और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के
1: जी।
0: साथ गाया।
1: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था, बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी, और जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल,
1: और हमारी सखी ने भी
0: कुछ
1: एक
0: लिखा है,
1: लिखा
0: बताइए
1: है,
0: मुझे सखी ने क्या लिखा है।
1: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना।
0: बहाना,
1: दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि
0: हाँ
1: शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी है।
0: आवाज थी बिल्कुल, और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से। तो
1: जी
0: विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं,
1: जी
0: और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से
1: जी
0: उन्हें बहुत बहुत
1: बहुत
0: श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे
1: जी
0: हैं।

0: आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
1: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह कर

0: को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
2: तो गाली क्यों देते हो?
1: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
2: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
2: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
2: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो?
2: हूँ ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
2: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्म त्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे।

0: संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
3: अच्छा,
2: जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते। क्यों दत्त तेरे लालची?
2: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
0: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
3: अब क्या करो, जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं। नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलू, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
0: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के

वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ

0: आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: हाँ तो मंजू जी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
6: बिल्कुल मिलने वाले हैं। और
5: हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
6: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
5: शुभकामनाएं
6: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
5: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है। लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं, और खासतौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर,
6: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे पर्दे बनाने।
5: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है,
1: जी
0: और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के
1: जी
0: आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल
1: आंख खुलती है, वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं
0: जी
1: माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए ना।
1: और
0: हाँ
1: हाँ उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए
0: कर
1: पसंद
0: सकते
1: का
0: हैं।
1: खाना बना
0: हाँ
1: सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और

0: जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब
1: जी
0: होते हैं, और
1: जी
0: बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं,
1: जी
0: हमारी पहली पाठशाला होते
1: बिल्कुल
0: हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा
1: जी,
0: है ना।
1: और उसका कारण भी है मोबाइल।
0: मोबाइल और सोशल मीडिया,
1: जी
0: ये हमारी जिंदगी बन गए
1: जी
0: हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं
0: ये
1: नहीं
0: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें
1: जी
0: संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो घर बच्ची की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं
1: पता ही नहीं चलता था,
0: लगता था।
1: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की,
0: बिल्कुल
1: तो उससे बच्चे सीखते थे, और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था।
1: जी
0: लेकिन मंजरी, आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं,
1: जी
0: जहां तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें
1: जी
0: छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे, और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने।
1: जी सही
0: और
1: बात है।
0: होता था कि जब माता पिता आते थे तो बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती
1: बिल्कुल
0: बच्चों
1: नहीं,
0: को
1: बिल्कुल नहीं,
0: जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य
1: सदस्य
0: पालते
1: पालते। और
0: हैं।
1: देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
0: बहुत
1: बात आपने
0: सुंदर बात
1: लिखकर
0: लिखी
1: भेजी।
0: है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पट्टा पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हम

0: जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो, पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं। उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले।
0: जी।

0: तो देखिए, अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
0: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो, तबियत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
1: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
0: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
1: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
0: नहीं होना चाहिए।
1: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है। आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता, और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
0: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
1: अरे, हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है मुझे।
0: और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
1: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी,
1: हाँ।
0: आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को
1: पिला
0: सकते हैं।
1: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं ना।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना, मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मंगौड़ी एक कप,
0: आलू चाहिए
1: आधा कप, आलू 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूने, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें इसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ अगर हमारे श्रोता पसंद करती है। सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा।

0: पर मैंने भी इसको बना के देखा था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें कटा हुआ, साबुत धनिया ले लें, और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें 1 छोटी चम्मच, अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो।
1: बिल्कुल
0: फिर आटा आटा को तैयार करें। एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए, और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6, और इसको गर्म गर्म तेल में तले, और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी
1: जी
0: निकल के आएगी ना वो
1: चाय के
0: गर्मा
1: साथ
0: गर्म चाय के साथ तो
1: क्या
0: स्वाद ले।
1: जी। और गीत गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह, जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
3: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
3: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है।
0: जी
3: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब

0: बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहाँ जाएंगे? पेट
1: पेट
0: में।
1: में
0: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशंस होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरियाज हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर
1: रास्ता
0: मसाज,
1: निकालेगा।
0: हाँ मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे। और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गॉज होता है, गॉज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गॉज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गॉज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गॉज पीस को पानी में डुबा के गीले गॉज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों के लिए
0: छोटे
1: ये भी
0: बच्चों के लिए
1: तरीका है।
0: एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 ईयर्स मतलब बचपन, पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
1: बिल्कुल।
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें,
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो चाहे
0: बच्चे
1: बड़े
0: हो,
1: हो।
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े ना हो जाए।
0: टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते हैं। बट ऐसा
1: हाँ
0: नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें
1: ओके।
0: माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड, फिर
1: चॉकलेट्स, बेकरी
0: चॉकलेट,
1: आइटम्स,
0: स्वीट्स, तो तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने, जो चीजें उनको पसंद है, उसमें बिस्किट्स आ

0: चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर
1: अरे
0: दोनों
1: बाप रे,
0: हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ,
1: ठीक है।
0: चलेगा।
1: हाँ
0: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके।
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही हैं,
1: तो हमको कहीं बाहर नहीं जाना
0: क्रेविंग
1: है।
0: नहीं होता है वो
1: यस
0: बाहर इजीली, जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए, आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: लेकिन नस तक
1: अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्टली।
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता
0: है,
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात
1: यहां पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहां पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं करी, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, ये बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है, तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो

0: दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं।
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते
1: हाँ
0: बैठे हो।
1: जी
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ, बिल्कुल। और सुबह उठते ही ब्रश करना
0: ब्रश करना
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: होता
1: है।
0: है।
1: डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब
0: सही,
1: आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मजे
0: अखरोट
1: से,
0: जैसे,
1: अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही।
0: हाँ जी,
1: आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा है।
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए।
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद
0: अच्छा,
1: हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। तो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो,
1: क्या बात है, महबूबा
0: क्योंकि
1: फिल्म का
0: दांतों में
1: गाना।
0: दर्द होता है तो नैनों से तो सावन बरसना ही है।
1: हाँ, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: यस,
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: यस yes.
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे,
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो,
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल,
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के

0: मुताबिक नहीं होंगी तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
1: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं
0: हाँ
1: है
0: जी
1: कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
0: एग्जैक्टली मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ
1: हाँ
0: तो
1: वही
0: वन
1: मैं
0: ट्वेंट
1: जानना चाहता हूं।
0: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है इट इज
1: हाँ
0: रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं। ये नंबर वाइज
1: ये बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: है।
0: ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है, ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है, जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल, जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरियाज
1: बैक्टीरिया
0: होते
1: होता
0: हैं
1: है
0: जैसे हमने
1: जी।
0: बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है, जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़ें होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है,
1: बिल्कुल,
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा रहा
1: बिना भी चल
0: हूं,
1: सकता है।
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, 1-1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक, वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में,
1: अच्छा
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है,
1: हाँ
0: वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन। खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: तो
1: बैलेंस
0: वो
1: करे।
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है।
0: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे हमारे पास नहीं है और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ। मैं

0: खुद को गायक नहीं मानता हूं,
1: जी
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूं।
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है। उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस

0: बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको। उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है, और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा,
1: जी
0: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के। फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है,
1: हाँ
0: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में, अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना। वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो, लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है। वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनस से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनस से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनस पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, सेम ही आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो, तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अनटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो, या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है, और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है। तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है।
0: हाँ जी,
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
0: दांतों की बीमारी नहीं है।
1: ओहो,
0: ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए। अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा,
1: यस,
0: तब दांत हिलेगा।
1: तो
0: हड्डी,
1: मामला है।
0: वो एक दिन में होता नहीं है, पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी 4 स्टेजेस है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है, उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं, स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मल लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहाँ से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे

0: मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस पे हो तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन है एक तरह
0: एग्जैक्टली
1: से।
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है।
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो,
1: हाँ,
0: अगर आप उस बारे में अवेयर हो, नहीं
1: लोग
0: तो
1: आपसे दूर जाने लगते हैं।
0: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना
1: कनेक्शन
0: हो,
1: हो जी।
0: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी।
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना।
0: कितना नॉर्मल है? आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
1: बिल्कुल।
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस।
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो, तो करोड़ों में जाती है, कई
1: बिल्कुल
0: 100 करोड़ों में जाती है,
1: यस
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं, फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो
0: एक
1: सारी
0: वो
1: चीजें
0: सारी
1: भी,
0: चीजें आई,
1: तंबाकू,
0: तंबाकू,
1: स्मोकिंग।
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की
0: दांतों की, ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह,
1: अरे अरे
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है,
1: बिल्कुल।
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल।
0: सजेशन मैं यहां दूंगा।
1: इसी
0: हाँ
1: बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहां पे सुनेंगे, यहां पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे
1: वाह, पर हम वफा करना सीखे
0: क्योंकि
1: क्योंकि आप हमारी केयर
0: आपने
1: करना सीखे।
0: एग्जैक्टली
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: हम

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत
0: लेवल में लाया जाता
1: है। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes,
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिवअप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है, एक स्क्रू जैसी चीज होती है। एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियसली बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
0: एक दांत का,
1: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120-130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
0: बहुत कम है,
1: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक।
0: इक्विवेलेंट है,
1: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
0: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है,
1: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
0: जी,
1: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
0: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि

0: दांत बहुत बेशकीमती हैं और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर उनकी कदर नहीं करते, तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
1: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, और खुल के
0: बिल्कुल,
1: स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF1 विभाग सरगुजा।

0: है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोधरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदर बसवार, केदमा, जगरनाथ, नाथपुर, ढोड़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चुंदी, बरटोली, हड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडीह, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहाभाठा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण अभी किया जा रहा था। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा के सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला नंदू भैया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो देखो बिकट ज्यादा जमुन तापमान रहे के ओकर संग में हमन थोर कुन ऐसे लगत के दू दिन पानी गिरीस ना तो कम तापमान हर जना थे संगवारी हो। काबर के संझा जुहार हवा पानी जौन हे तेन हर गिरे लगते तो ऐसे में बड़े आराम मिलते और हमार काम बूता जौन है ना तेनो हर बढ़िया ले होते। संगवारी हो चाहे घर के काम बूता रहे के खेत के रहे के फसल के काम बूता रहे के बागवानी के रहे एमा चेत रखना जरूरी रही थे और इसने चेत रखना है हमला नान्हे नान्हे जौन लइका मर रही थे उनखर। काबर के आज 1 जून के हमन मनाथन बाल सुरक्षा दिवस के रूप में और लइका मन हवाए तो ओकर सुरक्षा हवाए के अधिकार की रक्षा हवाए ओमन ला सुरक्षित वातावरण मिले ऐसे करके बाल श्रम जौन हवाए बाल विवाह एला रोकना है ओमन के शोषण होते ओला रोके बर बाल सुरक्षा दिवस मनाए जाते संगवारी हो। जेकर ले ओमन के शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के महत्व ला बढ़िया ले बताए बर ए दिवस ला मनाए जाते। को हमन बात करें छोटे लइका मन ला कैसे सुरक्षित रखें कहके तो घरे ले हमन शुरुआत करत हन तो बढ़िया रही। अकेला कहूँ लइका मन खेला तुलत है तो छोड़िन मत। घर में बिजली है गैस है खतरनाक वस्तु रही थे तो ओमन से दूरिया रखें। अच्छा और बुरा स्पर्श के ओमन ला जानकारी दहीन। परिवार के लोगन मन ले खुल के बात करे के जौन माहौल हवे ओला बना के रखें तो बढ़िया रही थी। ऐसने स्कूल में घलो चेत रखे बर पढ़ते संगवारी हो। सुरक्षित वातावरण लइका मन ला मिलत रहे ये बात के चेत रखना है। शिक्षक और जौन पालक गण हवे ओमन से संपर्क रहे तो बढ़िया रही थे। लइका मन ला कोनो भी समस्या हवे के ओकर जानकारी हवे तो ओकर बर हमन ला लइका पालक मन ला दोनों ला हमन ला प्रोत्साहित करत हन तो लइका मन जानकारी रखी। और आजकल ऑनलाइन के घलो हमन ला चेत रखना है। ऑनलाइन सुरक्षा बर मोबाइल है के इंटरनेट है कर उपयोग बर लइका मन की निगरानी करना जरूरी रही थे। अजनबी मनखे मन मिल गए तो ऑनलाइन उमा बातचीत ला झन करे एकर सावधानी बरतत हन तो बढ़िया रही संगवारी हो। व्यक्तिगत जानकारी ज़्यादा साझा झन करे ये शिक्षा देवत हन लइका मन ला तो बढ़िया रही। नशाखोरी गलत संगत से बचाए के जौन उपाय है ओला करत हन तो बढ़िया रही थे। ऑनलाइन परेशान जैसे साइबर बुलिंग हवे शारीरिक और मानसिक हिंसा से बचाव करत हन तो लइका मन के भविष्य हर सुघर रही थे। बच्चा मन देश के भविष्य होते संगवारी हो। एमन सुरक्षित रही स्वस्थ रही और शिक्षित रही तो समाज और देश दोनों हर विकास करही। एकरे से ते सरकार मन स्कूल परिवार समाज जम्मो झन मिल के बच्चा मन के सुरक्षा बर विशेष ध्यान रखते और बाल सुरक्षा दिवस ला बढ़िया से मनाते। गोट बात आओ करबो संगवारी हो फिर आवाओ सुनाथन संदेशाला।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ संगवारी हो देखो बढ़िया संदेशा सुनें और हमन गोट बात करत रहें बाल सुरक्षा दिवस जौन मनाथन तो लइका मन के चेत रखना है। देखो संगवारी हो ज्यादा हमन ला जौन समाचार और न्यूज में देखे मिलते कि तालाब है नदिया है कुआं है कि आओ गहरा पानी वाला डैम है तो ओमा डूबे के दुर्घटना ले रोके बर सावधानी रखना अब बड़े जरूरी होते। एकर बार चेत करना है संगवारी हो कि लइका मन ला कभो अकेला पानी में नहात वहात है या तौरत है तो ओमन ला ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ना हवे ओमन का निगरानी में रखना है। हमेशा जिम्मेदार वयस्क जौन व्यक्ति हवे ओकर निगरानी में हवे तो बढ़िया रही। तैरे सिखाएल पहली गहरा पानी में झन उतरा ये बात के चेत रखना है। छोटे लइका मन ला लाइफ जैकेट चाहे तैराकी सहायक होते ए उपकरण ला पहना के हमन अपन निगरानी रखत हन तो बढ़िया रही। तालाब के जौन गहरा और जौन फिसलन वाला रीते बिछल जाते तो वो हिस्सा की जानकारी घलो देना हवे। ज़्यादा धक्का मुक्की दौड़े और खेले कूदे वाला पानी में हमन ला लइका मन अगर वैसना बूता करत है कूदे फांदे के तो ये कर ले मना करत हन तो बढ़िया रही। बरसात अवैया है तेज बहाव के पानी गिरबेच करी और पानी हर रही तो वैसना ज़्यादा जौन डबरी जगह है के देवा

कोलवा वाला और तलाव हर भर भर रही थे तो ओ मेरा जाए ले मना करना हवे। तालाब के आसपास चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा घेरा लगा थे तो सुघर माने जाते। प्राथमिक उपचार और आपातकालीन सहायता की जानकारी लइका मन रखत थे और आसपास के मनखे मन रखत है ना तो बढ़िया से बचाव हर और सावधानी हर होते संगवारी हो। और गोठ बात तो हो गए, फिर आवाओ हमन बढ़िया गीत सुनाथन अलका चंद्राकर जी के स्वर में।

0: संगवारी हो सुघर गीत ल सुनेन चिरई चुरगुन की गोट बात निकली पशु पक्षी के हम मन ला चेत रखना हवे देखो अलका चंद्राकर जी और संगवारी मन के सुघर स्वर में सुनेन गर्मी के बेरा चलत है तो ऐसे में सबो जीव जंतु चाहे वो नानक चिराई ही क्यों न रहे सबके सुरक्षा करना जरूरी रही थे पानी रख दीहीन तो बढ़िया रही संगवारी हो और बढ़िया आप मन बर आज भेंट वार्ता लेके आए हवान खरीफ के फसल लगाए के बेरा हर आवत है तो ऐसे में चेत रखे पर पड़ते कि बीजा हमर रखीन खातू माटी के व्यवस्था रखीन तो हमर जो फसल है तेन हर बढ़िया रही तो महंगू भैया मन बढ़िया से श्री राकेश शर्मा जी जौन हर उप संचालक है कृषि विभाग जांजगीर चापा में ए मन से जौन खरीफ 2026 में उर्वरक आदान व्यवस्था के विषय में बढ़िया गोट बात करे संगवारे हो तो आवाओ सुना थन
1: किसान भाई हो खरीफ 2026 मां उर्वरक आदान व्यवस्था ये विषय में जानकारी दे खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हवें श्री राकेश शर्मा जी मन जौन हवें उपसंचालक जांजगीर चापा में तो सबले पहले तो स्वागत कर लेथन श्री राकेश शर्मा जी आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवे आप मन राम राम
2: राम राम मंगू भैया
1: सबले पहले जानना ये चाहथन कि जैसे सेवा सहकारी समिति बनाए जाते एकर माध्यम ले उर्वरक के वितरण के कार्य योजना कैसे ढंग से तैयार करे गए है वह
2: किसान भाइयों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी कुछ समय में मानसून का सीजन आ जाएगा और हम खरीफ फसलों की तैयारी में लग जाएंगे इस वर्ष सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से या निजी कृषि केंद्रों के माध्यम से जो उर्वरकों के वितरण की कार्य योजना है वो शासन ने एक अलग तरीके से निर्धारित की है इसके अंतर्गत शासन ये सुनिश्चित करेगी कि समस्त किसानों को चाहे वो छोटे किसान हो मध्यम किसान हो या बड़े किसान हो सभी को उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो जाए इसके लिए शासन ने इस बार तय किया है कि किसानों के जमीन के रकबे के आधार पर ही प्रति एकड़ किसानों को उर्वरकों का वितरण किया जाएगा यदि किसी किसान को उर्वरक न मिले ऐसी स्थिति

0: न बने उसके लिए कृषकों के रकबे के आधार पर कुल उर्वरकों का निर्धारण कर उन्हें 1 से 3 किस्तों में उर्वरक प्रदाय किए जाएंगे। अर्थात जो किसान 2.5 एकड़ तक की जमीन रखते हैं उन्हें एक मुश्त उनकी मांग के अनुसार संपूर्ण उर्वरक प्रदान किया जाएगा। जो किसान भाई 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक के रकबे पे खेती करते हैं उन्हें 2 किस्तों में संपूर्ण उर्वरक प्रदान किया जाएगा।
1: अच्छा।
0: और साथ ही जो बड़े हमारे किसान भाई हैं जिनका जमीन 5 एकड़ या उससे अधिक है उन्हें 3 किस्तों में उनकी मांग अनुसार उर्वरक वितरण किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सभी सेवा सहकारी समिति प्रबंधकों एवं निजी कृषि केंद्रों के प्रोपराइटर को यह निर्देशित किया गया है कि उर्वरक वितरण किए जा रहे किसानों की बेसिक जानकारी जैसे उसका नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, खेती का रकबा एकड़ में एवं मोबाइल नंबर अपने संस्था के रजिस्टर में संधारित करके जरूर रखें। साथ ही साथ शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि पुराने भंडारित उर्वरकों को भी पॉस के माध्यम से पुराने रेट के आधार पर ही कृषकों को वितरण किया जाना है।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: इसके साथ ही साथ जिला या राज्य स्तर पर किसी भी सेवा सहकारी समिति या निजी कृषि केंद्रों में कालाबाजारी या उर्वरकों के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो इसके लिए शासन ने कृषि विभाग के मैदानी अमलों को प्रत्येक दिवस सेवा सहकारी समितियों एवं निजी कृषि केंद्रों का सतत निरीक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि किसान भाइयों को उनके क्षेत्र में कहीं भी कालाबाजारी की स्थिति न हो और एक सही दर में शासन द्वारा निर्धारित सही दर में उनको उर्वरकों का वितरण और उसका विक्रय वो कर सके।
1: मतलब बहुत अच्छा ये बात रही से कि अभी हड़बड़ाए की जरूरत नहीं किसान भाई मल्ला। जैसन जैसन किसान हैं, छोटे किसान, लघु सीमांत किसान जुन रहे और हमार बड़े किसान हैं उनको बन जो उनकी पहली का है, बड़े किसान मन अपन अपन बर व्यवस्था करके सारा व्यवस्था लेके पैत में कर लेते रहने एकर से समस्या आगू नहीं आई काबर छोटे किसान मन ले मिले नहीं पात रही से
0: जी।
1: ये ऐसा बड़ा सुचारू रूप से जो व्यवस्था बनी से एकर पर कहे जाए तो बहुत बढ़िया ढंग से शासन कदम उठाए है जिमा आप मन के विभाग बढ़िया काम करत हवे। खास करके शर्मा जी एक समस्या थे जो DAP पर कमी रही थे और कमी रही घला काबर की अभी के समस्या का जो देखत हुए खाद्य संकट ला देखत हुए एकर स्थान मा एकर जगह मा कोनो आने ऐसे वैकल्पिक अगर व्यवस्था बनाए जा सके उर्वरक खातिर का चयन करें जेकर ले ये संकट ले मुक्ति पावे हमारे किसान भाई।
0: किसान भाइयों जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी खेती के लिए चाहे हम धान लगाएं चाहे हम सोयाबीन वगैरह फसल लगाएं DAP एक मुख्य पोषक तत्व के रूप में DAP का हम उपयोग करते हैं। इस DAP की कमी या उच्च लागत को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों और सरकार के द्वारा एक वैकल्पिक व्यवस्था या कार्य योजना बनाई गई है क्योंकि DAP में मुख्य रूप से फास्फोरस पाया जाता है और उस फास्फोरस की कमी को हम दूसरे अन्य रासायनिक और नैनो उर्वरकों का उपयोग करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। एक सामान्य रूप से देखें तो DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। अर्थात हम ऐसे वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों उपलब्ध हों।
1: अच्छा।
0: जैसे मैं बताना चाहूंगा कि सिंगल सुपर फास्फेट जिसे आप सभी अच्छे से जानते हैं ये एक प्रकार का प्रभावी विकल्प हो सकता है। तो यदि हमें DAP के 1 बोरी की कमी होती है तो हम 3 बोरी SSP और उसके साथ 20 किलो यूरिया का यदि उपयोग करके खेतों में छिड़काव करेंगे तो हमारी 1 बोरी DAP की कमी पूरी हो जाएगी। यदि हमारे पास NPK 12-32-16 है जो IFFCO कंपनी द्वारा प्रदाय की जाती है तो DAP के 1 बोरी कमी होने पर हम 1.5 बोरी NPK 12-32-16 का उपयोग कर DAP कमी पूरा कर सकते हैं। अच्छा। इसमें हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ पोटास भी उपलब्ध होता है। किसान भाइयों यदि हमारे पास अमोनियम फास्फेट सल्फेट है जिसे हम 20-20-0-13 के नाम से भी जानते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें भी 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 13% सल्फर भी पाया जाता है। तो DAP के 1 बोरी कमी होने पर हम 2 बोरी अमोनियम फास्फेट सल्फेट का उपयोग करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: किन्हीं किन्हीं सेवा सहकारी समितियों में ट्रिपल सुपर फास्फेट भी पाया जाता है तो वहां हम DAP के 1 बोरी बदले केवल 1 बोरी ट्रिपल सुपर फास्फेट और उसमें 20 किलो यूरिया मिला के खेतों में छिड़काव करें।
1: अच्छा।
0: तो TSP में जैसा हम जानते हैं कि 40% फास्फोरस होता है तो वह हमारे 1 बोरी की DAP कमी को पूरा कर देगा। किसान भाइयों जैसा आप सभी जानते हैं कि कई वर्षों से आप नैनो यूरिया और नैनो DAP का भी प्रयोग कर रहे हैं और आपने सेवा सहकारी समितियों और निजी कृषि केंद्रों से भी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उपलब्ध है। यदि आपको एक बोरी डीएपी कमी पड़ती है तो हम

0: 500 मिलीलीटर की दो बोतल नैनो यूरिया और 500 मिलीलीटर की दो बोतल नैनो डीएपी को भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: मैं बताना चाहूंगा इनमें से एक बोतल नैनो यूरिया और एक बोतल नैनो डीएपी को मिला के आप रोपाई के 20 से 25 दिन बाद खेतों में छिड़काव करें, फसलों पर छिड़काव करें, और पहले छिड़काव के अगले 20 से 25 दिन बाद यानी रोपाई के 40 से 45 दिन बाद आप दूसरे दो बोतल का उपयोग करके आप एक बोरी डीएपी कमी को पूरा कर सकते हैं अपनी फसलों में।
1: बढ़िया, सरल ढंग से बताया आप मन, किसान भाई मन एला अमल करत हैं तो बड़ा अच्छा उनकर बढ़ रही खाद के व्यवस्था। यूरिया और डीएपी एनपीके के वितरण प्रणाली यह आधार कहे जाए, एकर बार कैसे ढंग से व्यवस्था बनाया हो?
0: जैसा कि किसान भाइयों मैंने बताया कि शासन ने इस बार तय किया है कि किसानों को खेती के रकबे के आधार पर उर्वरकों का वितरण किया जाएगा। इसमें प्रश्न ये उठता है कि एक एकड़ या एक एकड़ से अधिक रकबे पर उन्हें कितनी बोरी यूरिया या डीएपी या एनपीके की मात्रा प्रदाय की जाएगी। तो मैं बता दूंगा इसमें कि जो हमारी कार्य योजना बनी है उसमें सर्वप्रथम तो शासन ने ये कहा है कि सीमांत और लघु किसानों को जिनकी संख्या प्रत्येक गांव प्रत्येक जिले में ज्यादा होती है,
1: अच्छा,
0: उनको प्राथमिकता दिया जाना है ताकि सेवा सहकारी समितियों या निजी कृषि केंद्र में उनकी भीड़ ना लगे,
1: अच्छा,
0: और उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही साथ शासन ने यह निर्देशित किया है कि यदि एक एकड़ किसी किसान भाई के पास जमीन है तो उसे दो बोरी यूरिया प्रदाय की जाएगी, यदि दो एकड़ की जमीन है तो तीन बोरी यूरिया प्रदाय की जाएगी, तीन एकड़ जमीन के लिए पांच बोरी यूरिया,
1: अच्छा,
0: चार एकड़ जमीन के लिए छह बोरी यूरिया और पांच एकड़ जमीन या उससे अधिक के लिए आठ बोरी यूरिया जो है किसान भाइयों को प्रदाय की जाएगी। किसान भाइयों यदि हम डीएपी या एनपीके वितरण की बात करें तो एक एकड़ जमीन के पीछे एक बोरी डीएपी या एनपीके, दो एकड़ जमीन के पीछे भी एक बोरी डीएपी या एनपीके, तीन एकड़ जमीन के पीछे दो बोरी डीएपी या एनपीके और चार एकड़ के पीछे दो बोरी डीएपी, पांच एकड़ या उससे अधिक के लिए तीन बोरी डीएपी जो है किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में कई देशों के बीच आपस में युद्ध चल रहा है और हमारा जो डीएपी है ये मुख्यतः विदेशों से आयात करके मंगाया जाता है। चूंकि युद्ध के कारण अभी डीएपी जैसे कई उर्वरक जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं और हम पहले से ही खेती में अंधाधुंध बहुत अधिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। शासन ने यह तय किया है कि इस बार संतुलित उर्वरकों का उपयोग किसानों को करना है और हमें किसानों को समझाइश देनी है कि इस प्रकार से अंधाधुंध उर्वरकों का उपयोग करके जो अपनी खेती की जमीन है उसे कड़ा ना बनाएं। हम जितना अधिक उर्वरकों का उपयोग अपनी खेती में करेंगे उतना ज्यादा हमारी खेत की मिट्टी कड़ी होगी, उतना ज्यादा हमारे खेत की फसलों पे कीड़ा और बीमारी का प्रकोप होगा। इसलिए हमें संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना है। अतः शासन ने प्रति एकड़ यह सुनिश्चित किया है कि प्रति एकड़ इतनी इतनी उर्वरक की मात्रा ही किसानों को देनी है जो पर्याप्त मात्रा में उनके फसलों की लागत को देखते हुए उनकी खेती की पर्याप्त उपज को बनाए रखे।
1: मतलब कहे जाए तो जतका डालना है खातो उतका डालें, संतुलित रूप ले डालें
0: जी,
1: जो उन फिजूल डालत रहने कहे जाए और जेकर से माटी अलग खराब होत रही से, तो बहुत अच्छा यही कदम है कहे जाए और किसान भाई मल्ला समझ में भी आते अभी एक तो संकट है दूसर कि संतुलित रूप में डाले जाए तो बड़ा अच्छा रही। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के घला अपन चर्चा करथन तो एकरो जानकारी उपयोग के कैसे ढंग ले हमारे किसान भाई मन करें ताकि ये क्षति की पूर्ति थोड़ा अच्छा ढंग ले हो पाए।
0: किसान भाइयों जैसा हमने अभी चर्चा की कि इस साल आप सभी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का भी प्रयोग कीजिए। नैनो यूरिया जो है वो 16% कंसंट्रेशन पे पाया जाता है और जो नैनो डीएपी है वो उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस पाया जाता है और ये फसलों की अधिक उपज और बेहतर पोषण के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा मैं नैनो यूरिया के बारे में बताऊं कि मुख्यतः हमारी फसल जो है वो धान है और धान में तीन प्रकार के हम बीजों का उपयोग करते हैं। पहला तो शीघ्र अवधि में पकने वाली फसलें हैं जो 90 से 110 दिन में हमारी पक जाती है। एक मध्यम अवधि की किस्म होती है जो 110 से 120 दिन में पकती है और मध्यम अवधि से अधिक की भी किस्में होती हैं जो 126 से 140 दिन में हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है। यदि हम शीघ्र अवधि वाली यानी 90 से 110 दिन की अवधि वाली धान की किस्म लगाते हैं तो दो स्प्रे उसमें नैनो यूरिया 16% करना चाहिए। प्रथम स्प्रे का जो समय है वो धान की बुआई या रोपाई के 30 से 35 दिनों के पश्चात प्रति एकड़ नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में खेत में धान की फसलों की पत्तियों में छिड़काव करना।

0: चाहिए।
1: अच्छा
0: उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा स्प्रे है उसमें धान की बुआई या रोपाई के 55 से 60 दिनों के पश्चात प्रति एकड़ नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में पर्णी छिटकाव करना चाहिए। यदि हम मध्यम अवधि की फसल लगाते हैं अर्थात हम 110 से 125 दिन की में जाते हैं तो पहला जो छिड़काव है वो धान की बुआई या रोपाई के 45 से 50 दिनों के पश्चात प्रति एकड़ 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया को 150 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में पर्णी छिड़काव करना चाहिए। और जो दूसरा स्प्रे है वो धान की बुआई या रोपाई के 75 से 80 दिनों के पश्चात 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया को 150 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में पर्णी छिड़काव करना चाहिए।
1: अच्छा, अच्छा।
0: किसान भाइयों यदि हम लंबी अवधि की फसल लगाते हैं अर्थात हम स्वर्णा या MTU 1001 में जाते हैं तो वहां पर हमें नैनो यूरिया के प्रथम स्प्रे को धान की बुआई या रोपाई के 45 दिनों के पश्चात 500 लीटर मात्रा को 150

0: किसान भाइयों, यदि हम लंबी अवधि की फसल लगाते हैं, अर्थात हम स्वर्णा या MTU 1001 में जाते हैं, तो वहां पर हमें नैनो यूरिया के प्रथम स्प्रे को धान की बुआई और रोपाई के 45 दिनों के पश्चात 500 लीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव करना चाहिए। और यदि हम द्वितीय स्प्रे की ओर जाते हैं तो धान की बुआई और रोपाई के 85 से 90 दिनों के पश्चात प्रति एकड़ 500 मिलीलीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए। जैसा कि मैं बताया किसान भाइयों कि नैनो यूरिया के साथ साथ हम नैनो DAP का भी उपयोग हमें करना चाहिए। खेतों के लिए बहुत अच्छा है, फसलों के लिए अधिक उपज और बेहतर पोषण मिलता है फसलों को। नैनो यूरिया को हम कुल तीन प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहला, हम सीधी बुआई हेतु बीजोपचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत नैनो यूरिया की 200 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर 30 किलोग्राम धान के बीज को उपचारित कर छायादार स्थान में आधे घंटे तक रख देवे और हवा में उसको सुखाकर फिर खेतों में उसकी बुआई के रूप में उपयोग कीजिए। जो हमारे रोपाई के पौधे तैयार होते हैं उसमें भी हम नैनो DAP का उपयोग कर सकते हैं। इसमें नैनो DAP की 200 मिलीलीटर मात्रा को 40 लीटर पानी में घोलकर धान की रोपाई के पूर्व 30 मिनट तक धान के रोपाई के पौधों की जड़ों का उससे उपचार किया जा सकता है। इससे भी फसलों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है। इसके साथ साथ नैनो DAP को खेत में खड़ी फसल में छिड़काव भी करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। धान की बुआई या रोपाई के 25 से 30 दिनों के पश्चात प्रति एकड़ नैनो DAP की 300 मिलीलीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में पर्णी छिड़काव करने से फसलों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि धान की खड़ी फसल में नैनो DAP जिसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस पाया जाता है, कि एक बोतल जो 500 मिलीलीटर की आती है प्रति एकड़ उपयोग करने से 50% फास्फोरस की बचत होती है।
1: अच्छा,
0: किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 500 ml का नैनो यूरिया है वो आपको सेवा सहकारी समितियों या निजी कृषि केंद्रों से 225 रुपए का एक बॉटल और 500 ml DAP का जो एक बॉटल आता है वो 600 रुपए प्रति बॉटल की दर से आप चाहे सेवा सहकारी समितियों में KCC के माध्यम से या निजी कृषि केंद्रों से नगद के माध्यम से आप इसका क्रय कर सकते हैं एवं खेती में इसका उपयोग करके बेहतर फसल और अधिक उपज के प्राप्त कर सकते हैं।
1: आखिर में उप संचालक हो आप जांजगीर में, तो आदान व्यवस्था कैसन है अपन?
0: मैं बताना चाहूंगा कि जिला जांजगीर में 102 सेवा सहकारी समिति है। वर्तमान में बीज निगम के माध्यम से न केवल उर्वरक बल्कि बीज भी बीज निगम के माध्यम से भंडारण हो रहा है। 102 सेवा सहकारी समितियों में सभी केंद्रों पर बीज का पर्याप्त भंडारण हो चुका है और वितरण भी KCC के माध्यम से चालू है। वही मार्केट के माध्यम से सभी डबल लॉक से सभी 102 सेवा सहकारी समितियों में उपलब्ध उर्वरक का भंडारण हो चुका है। किसान भाई KCC के माध्यम से लगातार उर्वरकों का अग्रिम उठाव अपनी मांग के अनुसार कर रहे हैं और हमारे चारों डबल लॉक में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता है। मैंने सभी सेवा सहकारी समितियों और डबल लॉक से इसमें चर्चा की है और समितियों में जहां भी उर्वरकों कमी हो रही है तत्काल RODD के माध्यम से हम संबंधित डबल लॉक से उर्वरकों की मांग करते हैं और विदिन अ डेज एक दिन के अंदर सेवा सहकारी समितियों में उर्वरकों की आपूर्ति कर दी जाती है, जिससे कहीं पर भी अभी उर्वरकों की कमी जैसी बात प्रदर्शित नहीं हुई है।
1: बहुत अच्छा विषय रही सब है, खरीफ 2026 माह उर्वरक आदान व्यवस्था। ये विषय में जानकारी दे हमारे स्टूडियो में आया एक बार श्री राकेश शर्मा जी, आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं राकेश कुमार शर्मा, उप संचालक कृषि जिला जांजगीर, अपने जिले अपने राज्य के सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि आप अपने खेती के रकबा के आधार पर उर्वरकों का उठाव कीजिए। साथ ही साथ आप यदि किसी भी उर्वरक की कमी होती है तो उसके अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के भी चयन पे ध्यान दें, क्योंकि किसी भी उर्वरक की आपूर्ति अन्य उर्वरकों से किया जा सकता है। जैसे DAP कमी होती है तो हम SSP, NPK, नैनो यूरिया, नैनो DAP या अमोनियम फास्फेट सल्फेट के माध्यम से अपनी खेती में उपयोग कर उस DAP कमी को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं किसान भाइयों से अपील करूंगा कि आप एक मुश्त उर्वरकों का उठाव न करें, क्योंकि आपकी फसलों को तीन अलग अलग समय पर उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अतः आप एक मुश्त न उठाकर अपने फसलों की जरूरतों के आधार पर अपने खेती के रकबे के आधार पर उर्वरकों का उठाव कीजिए। साथ ही साथ अपने खेतों में नैनो यूरिया और नैनो DAP का भी प्रयोग कर अपने खेती में अधिक उपज लाने के लिए मेहनत करें और साथ साथ फसलों का बेहतर पोषण के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनावें। मैं किसान

0: भाइयों से ये भी अपील करूंगा कि आप संतुलित उर्वरकों का भी उपयोग कीजिए, अर्थात हम जो बहुत अधिक मात्रा में खेती में उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं उसके स्थान पर हम उर्वरकों की उतनी ही मात्रा का उपयोग करें जिससे पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ जो फसलों का उपज है वो हो जाए और हमारी खेती भी खराब ना हो, ना ही हमारी खेत की मिट्टी खराब हो और साथ ही साथ हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छे से बनी रहे।
1: संगवारी हो, खरीफ 2026 में उर्वरक आदान व्यवस्था के विषय में बढ़िया जानकारी सुनत रहें श्री राकेश शर्मा जी, उप संचालक हो कृषि विभाग जांजगीर चापा में। और महंगू भैया मन बढ़िया से गोट बात करी से संगवारी हो। संगवारी हो, गोट बात करबो हमन छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड ले जानकारी अनुसार मंडी भाव के। तो तखतपुर मंडी के जौन भाव रही धान महमाया के 2000 ले 2000 रुपये रही। जयराम नगर के मंडी में रही संगवारी हो धान महमाया के रेट हर 1900 ले 1900 रुपया। इन्हें चला जयराम नगर मंडी में रही धान 1010 हर 1900 ले 1900 रुपये रही। न्यूनतम अधिकतम के दर ले आज के जौन भाव रही धान के तेन हर रही संगवारी हो। आओ गोट बात करबो हमन अभी के बेरा में जौन कृषि सलाह दे जाती कृषि वैज्ञानिक के अनुसार। तो खरीफ मौसम में हमन खेत के गहिला जोताई करत हन और ओकर बाद बरोबर कर लेथन जौन ढेला पखरा हवा ओला निकाल के फेंक देथन। तो बंद कचरा जौन हवा खरपतवार ओहर कम जामथे संगवारी हो। संगवारी हो, पानी के जौन वर्षा के जल के हमन ला मेड़बंदी करके उचित पानी निकासी के व्यवस्था करके बढ़िया ले चेत रखथन तो जल संरक्षण हर बढ़िया रही। धान है, जोंधरी है, राहेर है, सोयाबीन है, एकर बीजा ला हमन ले के बढ़िया से उन्नत प्रमाणित बीजा रहे तो बेरा में ओकर व्यवस्था करथन लगाए के तौ बने रही थी। ऐसने हमन पशुपालन करथन तभो चेत रखना है दुधारू पशु मन ला 4 ले 5 पैत ताजा पानी में बढ़िया ले पिए बर रखथन ओकर तौ सुघर रही। 50 ले 60 ग्राम 1 छटाक नून डाल देथन तौ बने माने जाते। दूध उत्पादन ले ला बढ़ाए बर 25 ले 30 किलोग्राम हरियर चारा ला हमन 3:1 में देथन तौ बने माने जाते जेकर ले दुग्ध उत्पादन हर ज्यादा बढ़ते संगवारी हो। ऐसने हमन मुर्गी पालन करथन तो संगवारी मन ला चेत रखना है कि चिया जौन है तो 5 ले 7 दिन के उम्र में रानी खेत के जौन बीमारी होते तो रोग के बर टीका लगवाना जरूरी होते संगवारी हो। कृमि ले बचाए बर जीवाणु है, विषाणु है, एकर ले बचाए बर सुरक्षित जगह के हमन चयन करथन तो बीमारी हर नहीं फैलाए, संक्रामक बीमारी हर नहीं होवे। तो ऐसे करके हमार गोट बात रही नंग सिरावत है। और आप मन ला ग्राम सभा ले देवा विदा। नंदू भैया के जय जोहार, राम राम।

कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण भी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:35 हुए हैं। समय है हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवा जगत का।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा जगत और मैं हूं आपका साथी अभिजीत सिंह। दोस्तों, मैं अभी एग्जाम देके यहां आ रहा हूं और आपको पता ही होगा क्योंकि आप और हम तो सेम ही उम्र में हैं, तो एग्जाम का जो प्रेशर होता है, एग्जाम की जो तैयारी होती है, वो बड़ी थकाने वाली होती है। मैं आज आपसे एग्जाम की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि हाल ही के कुछ समयों में आपने सुना होगा कि आज ये एग्जाम था, कल ये एग्जाम था, परसों ये एग्जाम होने वाला है और ऐसे कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होते रहती हैं। तो मैं सोच रहा था साथियों कि इतनी परीक्षाएं हो रही हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई प्रशासनिक सेवाओं में जाकर देश की सेवा करना चाहता है, तो कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, या फिर कोई रेलवे में जा सकता है, या कोई अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य खोज लेता है। तो इन सपनों को साकार करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? प्रतियोगी परीक्षाएं। लेकिन क्या केवल

ने देखना पर्याप्त है? नहीं, उसे पूरा करने के लिए सही दिशा, अनुशासन, निरंतरता और अच्छे परिणाम की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें उचित संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। और जब बात अध्ययन तथा ज्ञान के विस्तार की आती है तो ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो आज के जमाने में तो ई लाइब्रेरी हो गई है, जहां हमें देखने मिलती है कंप्यूटर और कंप्यूटर में बहुत सारे ई बुक्स। पर पहले के जमाने में जब हमारे मम्मी पापा लाइब्रेरी जाया करते थे तो लाइब्रेरी में मिलती थी क्या? मोटी मोटी बुक्स, हर अपने अपने सब्जेक्ट्स की अलग अलग, हर ऑथर की नई नई मोटी मोटी बुक। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ग्रंथालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं की। आज का समय प्रतिस्पर्धा का है, लगभग हर क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ऐसे में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि सही रणनीति भी आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। जब हमें यह पता होता है कि हमें किस परीक्षा की तैयारी करनी है, तब हम उसी के अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण पहलू की बात जो होती है वो ये है समय प्रबंधन, जिसमें आप और मैं दोनों चूक जाते हैं। सफल अभ्यर्थी वही होता है जो अपने समय का सही उपयोग करना जानता है, ऐसा तो सब कहते हैं, लेकिन वो अभ्यर्थी क्या करे जो अपना पूरा समय प्रबंधन भी करता है, सब करता है, लेकिन फिर भी चूक जाता है। तो हमें निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि नियमित अध्ययन, विषयों का संतुलित विभाजन और पुरानत्व की आदत हमें सफलता की संभावना देती है। इसके साथ ही वर्तमान घटनाओं की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहले तो हमसे वही पूछा जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, समाचार पत्रों को पढ़ना है, पत्रिकाओं को पढ़ना है और विश्वसनीय स्रोतों से जुड़कर अभ्यर्थी अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकता है। आज का युग तो डिजिटल है, ऑनलाइन सामग्री आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। साथियों, अच्छी पुस्तकें न केवल ज्ञान देती हैं बल्कि विषय की गहराई को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। कई बार असफलता मिल सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति अत्यंत सफल हो सकता है। तो श्रोताओं, कहा यह गया है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करते हैं। आपको आज के क्रम भी और सुनवाएंगे, आज की बातें और भी बताएंगे, पर कार्यक्रम में उससे पहले वक्त हो गया है आज के पहले गाने का, जिसे गाया है जावेद अली और शताक्षरी गोपालन ने, लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है AR रहमान ने। यह गाना है फिल्म जब तक है जान का।

0: दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको आपके पसंद का क्रम भी सुनवाएंगे, तो लीजिए, आ गया है आज का हमारा क्रम प्रकृति और पर्यावरण, जिसमें बात हुई है श्रेया सिंह जी से, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस विषय की एक स्टूडेंट हैं। तो लीजिए, सुनिए उनसे।
1: श्रोताओं, इस समय देश के अनेक हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। दोपहर की धूप पहले से कहीं अधिक तीखी महसूस हो रही है और लू के थपेड़े आम जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी केवल असुविधा का विषय नहीं रह गई, बल्कि यह स्वास्थ्य, पर्यावरण और हमारी जीवन शैली से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से शहरीकरण, घटती हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात है जागरूकता, क्योंकि सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी हमें गर्मी के दुष्प्रभावों से बचा सकती है। आज का यह क्रम हमें ये बताने के लिए है कि बढ़ती गर्मी के पीछे क्या कारण है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लू से कैसे बचा जा सकता है और हम अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का पे क्या योगदान दे सकते हैं। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों पर भी चर्चा करेंगे। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रेया सिंह। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: श्रेया। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोता साथियों को दे दें।
2: जी नमस्कार, मेरा नाम श्रेया सिंह है और मैं एनवायरमेंट साइंस की स्टूडेंट हूँ।
1: जी तो श्रेया, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में लगातार बढ़ रहा है ये तापमान और हीट वेव की स्थिति को आप किस प्रकार देखती हैं?
2: आज हम सभी महसूस कर रहे हैं कि गर्मी पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और लंबे समय तक रहने लगी। पहले जहां मई जून के कुछ दिनों में ही अत्यधिक गर्मी पड़ती थी, वहीं अब मार्च अप्रैल से ही तापमान बढ़ने लगता है। कई जगहों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। यह केवल असुविधा की बात नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि और दैनिक जीवन के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। हीट वेव के दौरान लोगों को लू लगने, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसे सामान्य मौसम घटना मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: तो क्या बढ़ती गर्मी केवल मौसमी परिवर्तन है या यह जलवायु परिवर्तन का भी परिणाम है?
2: बढ़ती गर्मी को केवल मौसम का सामान्य बदलाव नहीं कहा जा सकता, इसमें जलवायु परिवर्तन की भी बड़ी भूमिका है। दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। इसके पीछे मानव गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं, जैसे अत्यधिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग। जब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें अधिक बढ़ती हैं, तो धरती की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और तापमान लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए केवल एक मौसम की समस्या

0: बल्कि वैश्विक स्तर की चिंता का विषय है।
1: तो श्रेया, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि गर्मी के स्वरूप और अवधि में हमको बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, तो वो क्यों है और किस लिए है, ये थोड़ा अगर आप हमारे श्रोता साथियों को बता पाएं।
0: जी, सबसे बड़ा बदलाव यह दिखाई देता है कि गर्मी अब अधिक जल्दी शुरू हो जाती है और देर तक बनी रहती है। पहले कुछ दिनों की तेज गर्मी होती थी, लेकिन अब लगातार कई सप्ताह तक हीट वेव जैसी स्थिति बनी रहती है। रात के समय भी तापमान पहले की तरह कम नहीं होता, जिससे लोगों को राहत नहीं मिलती। इसके अलावा बारिश का समय और मात्रा भी प्रभावित हुई है, कभी बहुत कम बारिश होती है तो कभी अचानक बहुत ज्यादा। यह बदलाव हमें संकेत देता है कि पर्यावरण और जलवायु में कुछ गंभीर परिवर्तन हो रहे हैं।
1: जी, तो जैसे बढ़ती गर्मी का हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, पर क्या असर पड़ता है, अगर आप ये कुछ बता पाएं।
0: बढ़ती गर्मी का सबसे सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। तेज धूप और अधिक तापमान के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द और थकान महसूस हो सकती है। कई लोगों को लू लग जाती है, जो गंभीर स्थिति बन सकती है। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी की जरूरत है। इसके अलावा अत्यधिक गर्मी हृदय और श्वास संबंधी रोगों को भी बढ़ा सकती है, इसलिए गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
1: जी श्रेया, जैसे कि हमने अभी आपसे पूछा और आपने भी अपने उत्तरों में बताया कि लू लग जाता है, तो आप हमारे श्रोता साथियों को ये बताइए कि लू के प्रमुख लक्षण क्या हैं?
0: लू लगने पर व्यक्ति को तेज बुखार जैसा महसूस हो सकता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सिर में तेज दर्द होता है और चक्कर आने लगती है। कई बार उल्टी, कमजोरी और बेहोशी जैसी स्थिति भी हो सकती है। व्यक्ति का शरीर बहुत गर्म महसूस होता है और पसीना आना भी बंद हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत छायादार स्थान पर ले जाकर ठंडा पानी देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। समय पर इलाज ना मिलने पर लू जानलेवा भी हो सकती है।
1: तो आम लोगों को अपनी दिनचर्या में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए इस भीषण गर्मी को देखते हुए?
0: गर्मी के मौसम में कुछ छोटे छोटे बदलाव बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में धूप में कम से कम निकलें, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। सुबह और शाम के समय टहलना और व्यायाम करना बेहतर रहता है। बाहर जाते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखना चाहिए। इसके अलावा खान पान में भी हल्का और पौष्टिक भोजन शामिल करना चाहिए।
1: जी सर, जैसा कि आपने अभी ही अपने उत्तर में बताया कि घर से बाहर जाते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोता साथियों को बताइए कि घर से बाहर निकलते समय किन किन सावधानियों में हमें रहना चाहिए या हमें अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर वालों का रखना चाहिए।
0: जी, जब भी तेज गर्मी में बाहर निकलना हो तो सिर को ढक कर निकले, पानी की बोतल साथ रखें और समय समय पर पानी पीते रहें। धूप का चश्मा और छाता भी उपयोगी हो सकता है। कोशिश करें कि लंबे समय तक सीधे धूप में खड़े ना रहें। यदि काम की वजह से बाहर जाना जरूरी हो तो बीच बीच में छाया में आराम करें। ये साधारण सावधानियां हमें गर्मी के दुष्प्रभावों से काफी हद तक बचा सकती हैं।
1: जी तो श्रेया, जैसे कि हम डॉक्टरों से भी सुनते हैं या हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि गर्मी के समय हमारे घर वाले भी और डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें खान पान में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, बाकी सीजन के हिसाब से हमें गर्मी में थोड़े चेंजेस करने चाहिए, तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, अगर इस विषय पर आप जानकारी दे पाएं?
0: गर्मी के मौसम में ऐसा भोजन करना चाहिए जो शरीर को ठंडक और ऊर्जा दोनों दे। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और संतरा बहुत लाभदायक होते हैं। नींबू पानी, छाछ, लस्सी और नारियल पानी भी शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन कम करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। संतुलित और हल्का भोजन गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा माना जाता है।
1: जी, तो आप हमारे श्रोता साथियों को ये बताइए श्रेया कि क्या केवल पानी पीना पर्याप्त है, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना है कि वो गर्मी से बचने के लिए कहते हैं कि खूब पानी पीजिए, तो सिर्फ पानी पीना अनिवार्य है या और भी कुछ हम कर सकते हैं?
0: पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल पानी पीना ही पर्याप्त नहीं होता। शरीर को जरूरी मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, जो पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसलिए छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी और फलों का सेवन भी जरूरी है। ये शरीर में पानी के साथ साथ जरूरी पोषक तत्वों की भी पूर्ति करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्यास लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि नियमित अंतराल पर पानी पीते रहना चाहिए।
1: जी, तो हम बच्चों को, बुजुर्गों को और मजदूरों को क्या विशेष सलाह देना चाहेंगे, स्पेशली मजदूरों को क्योंकि वो दिन में बाहर काम करते हैं?
0: जी, ये तीनों वर्ग गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों को धूप में खेल

0: खेलने से बचना चाहिए और उन्हें पर्याप्त पानी देना चाहिए। बुजुर्गों को घर से अंदर ठंडी जगह पर रहना चाहिए और समय समय पर पानी पीना चाहिए। वहीं जो लोग खुले में काम करते हैं उन्हें बार बार आराम करना चाहिए, सिर ढककर रखना चाहिए और अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए। इन लोगों के लिए सावधानी बेहद जरूरी है।
1: जी, तो श्रेया, जैसे कि मैंने आपसे कुछ समय पहले पूछा था कि लू की जो लक्षण हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये अगर यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो प्राथमिक उपचार के रूप में हम तुरंत क्या कदम उठा सकते हैं?
0: यदि किसी व्यक्ति को लू लगने की आशंका हो तो सबसे पहले उसे तुरंत धूप या गर्म स्थान से हटाकर किसी ठंडी और हवादार जगह पर ले जाना चाहिए। उसके कपड़े को थोड़ा ढीला कर दें ताकि शरीर को आराम मिल सके। यदि व्यक्ति होश में हो तो उसे धीरे धीरे ठंडा पानी, नींबू पानी, ORS या कोई अन्य तरल पदार्थ पिलाया जा सके। इसके अलावा शरीर को ठंडा करने के लिए गीले कपड़े से शरीर को पोंछना या माथे, गर्दन और हाथ पैरों पर ठंडी पट्टी रखना भी फायदेमंद होता है। अगर व्यक्ति को तेज बुखार, बेहोशी, सांस लेने में परेशानी या बार बार उल्टी हो रही हो तो इसे गंभीर स्थिति मानते हुए तुरंत डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। अक्सर लोग लू को साधारण कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय पर उपचार न मिलने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए जागरूकता और त्वरित कार्यवाही बहुत जरूरी है।
1: तो श्रेया, अब मुझे ये जानना है कि क्या पेड़ों की कटाई, घटती हरियाली या फिर हम कह सकते हैं जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं या शहरीकरण कर रहे हैं, क्या ये भी हमारी बढ़ती गर्मी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, या इस संबंध में हम कैसे क्या समझ सकते हैं इन स्थितियों में?
0: बढ़ती गर्मी के पीछे पेड़ों की कटाई और अनियोजित शहरीकरण भी बड़े कारण हैं। पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से वातावरण को ठंडा रखने का काम करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं और अपने आसपास के तापमान को संतुलित रखते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं तो उनकी जगह कॉन्क्रीट की इमारतें, सड़कें और अन्य निर्माण कार्य हो जाते हैं, तो गर्मी अधिक मात्रा में अवशोषित होती है। यही कारण है कि शहरों में गांवों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस होती है। आज हमें विकास की जरूरत जरूर है, लेकिन ऐसा विकास जरूर होना चाहिए जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चले। अगर हम हरियाली को बचाएंगे और नए पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से बढ़ती गर्मी को कम करने में मदद मिलेगी।
1: तो आम नागरिक अपने स्तर पर ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकता है जो पर्यावरण संरक्षण में तो काम आए और साथ ही साथ तापमान नियंत्रण में भी हमको सहायक हो?
0: पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करके बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे पहले हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करना भी पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर हम अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने का प्रयास करें, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा दें और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएं तो इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे। याद रखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया हर छोटा कदम भविष्य की के लिए एक बड़ा योगदान होता है।
1: तो श्रेया, हर वर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस दिवस का क्या महत्व है और यह लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरीके से प्रेरित कर सकता है, इस बारे में आप कुछ बताइए।
0: विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता के नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब यह दिवस हमें याद दिलाता है कि यदि हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन स्कूलों, महाविद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम।
1: तो जैसे कि श्रेया, अभी 4 दिनों के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है, तो इस अवसर पर आप हमारे श्रोता साथियों को ऐसे कौन सा संकल्प लेने का सलाह देंगे जो पर्यावरण संरक्षण को और बढ़ती गर्मी को निपटने में एक सार्थक योगदान देने का एक जरिया बन सकता है?
0: मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत अपने घर और अपने आसपास से करें। हम यह संकल्प लें कि हर वर्ष कम से कम 1 या 2 पेड़ जरूर लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। हम पानी और बिजली की अनावश्यक बर्बादी नहीं करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। इसके साथ ही बच्चों और युवाओं को भी पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे।

0: तो श्रोताओं, आज की चर्चा ने यह स्पष्ट किया कि बढ़ती गर्मी केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि प्रकृति की ओर से एक गंभीर चेतावनी भी है। यदि हम समय रहते सचेत नहीं हुए तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर और अधिक तरीके से दिखाई देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान भी हमारे हाथों में ही है। थोड़ी सी सावधानी, संतुलित जीवन शैली, पानी का संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाकर हम इस चुनौती का सामना कर सकते। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस आने ही वाला है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश भी देता है कि प्रकृति केवल हमारे लिए संसाधनों का स्रोत नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है, इसलिए उसकी रक्षा करना है और ये हमें अपना कर्तव्य मानते हुए करना है। आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण की संरक्षण करेंगे और केवल ये एक अभियान के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। एक पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज का यह क्रम हम खत्म करते हैं और हमारे अतिथि को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी।
1: क्रम प्रकृति और पर्यावरण में भी आप सुन रहे थे विषय बढ़ती गर्मी से कैसे बचाव करें पर श्रेया सिंह जी से हुई ये बातचीत। साथियों, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परिश्रम जितना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है सही अध्ययन वातावरण। और जब अध्ययन के लिए शांत, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक स्थान की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान आता है ग्रंथालय का, यानी कि लाइब्रेरी का। दोस्तों, लाइब्रेरी केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं है बल्कि यह ज्ञान, विचार और सीखने की संस्कृति का केंद्र है। इसके ज्ञान अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके जो ज्ञान होते हैं वो मंदिर के समान होते हैं, इसीलिए हम ग्रंथालय को ज्ञान का मंदिर कहते हैं। प्राचीन काल में भी ग्रंथालय समाज के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आज भी विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा लाइब्रेरी से जुड़कर अपनी ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। दोस्तों, ग्रंथालय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वहाँ एक शांत और अनुशासित वातावरण मिलता है। यह वातावरण एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है और अध्ययन को अधिक प्रभावी बनाता है। इसके अलावा ग्रंथालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, संदर्भ सामग्री, समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध होती हैं। इससे पाठकों को एक ही स्थान पर विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पर दोस्तों, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट में उसी लाइब्रेरी में अपन को ई बुक्स भी अवेलेबल हो जाते हैं और इंटरनेट पर जो जो नोट्स डले हैं, जो जो रिसर्च पेपर डले हैं, हमको वो भी मिल जाते हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी का महत्व आज के ज़माने में और बढ़ गया है। आज जब हम मोबाइल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रंथालय हमें गहराई से पढ़ने और सोचने की आदत विकसित करने में भी सहायता करता है, क्योंकि जब हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी एक ग्रंथालय है। हम गूगल में जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं और हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह केवल परीक्षा की तैयारी के लिए ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व के विकास और बौद्धिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ग्रंथालय एक ऐसा मंच है जहां वे न केवल अध्ययन कर सकते हैं बल्कि अन्य अभ्यर्थियों से प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ग्रंथालय तो कर रहा हूं लेकिन हमारे शहर में ग्रंथालय हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का एक जिला ग्रंथालय है जो कि तिलक नगर में उपस्थित है और एक ग्रंथालय है सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि नगर निगम का है। तो आप यहां जा सकते हैं और अपने जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं किसी भी किताब के द्वारा। तो साथियों, आज हमने जाना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य, अनुशासन, समय प्रबंधन और निरंतर अभ्यास कितना आवश्यक है। साथ ही यह भी समझा कि ग्रंथालय केवल किताबों का भंडार नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि मेहनत और सही

का साथ मिल जाए तो सफलता की राह आसान हो जाती है। और इस यात्रा में ग्रंथालय एक ऐसा मित्र है जो आपको हर कदम हर समय मार्गदर्शन करता रहता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक गाना सुनाता हूं, और वो गाना है एपी ढिल्लों का।

दोस्तों पढ़ते रहिए, अपनी बुद्धि समृद्ध करते रहिए और बहुत सफल बनिए। इसी संदेश के साथ दीजिए अनुमति अपने दोस्त अभिजीत सिंह को। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जोहार।

युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा जगत का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आज शाम 7:10 पर दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे एनएसडी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण। विषय होगा गरीब कल्याण। सुगम संगीत में आज के कलाकार होंगे आदेश श्रीवास्तव और प्रसारण समय होगा रात 8 बजे। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुनने का आनंद लिया जा सकेगा शाम 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी। कार्यक्रम रजनीगंधा की खुशबू बिखरेगी रात्रि 8:15 पर। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के साथ ही रात्रि 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज के कुछ शेष कार्यक्रमों की। आइए जानते हैं कल के प्रमुख आकर्षणों को। कल 2 जून 2026 हमारा दैनिक प्रसारण आरंभ होगा प्रातः 5:51 पर। खेती की बात में प्रातः 6:30 पर चर्चा करेंगे सूखे चारे का यूरिया उपचार। चिंतन में कल का विषय होगा समन्वित और संतुलित आलोचना ही कर।

करें, आलेख श्री अशोक रहर गांवकर का होगा और प्रसारण समय है प्रातः 6:45। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां का प्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा, समय होगा सुबह 8:30 पर। रायपुर से ही अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम उजाले की ओर, इसका प्रसारण समय श्रोताओं दिन में 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनिए दिन में 11 बजे। कार्यक्रम नए ताराने हम लेकर आएंगे 10:30 पर और सदाबहार नगमे का आनंद लिया सकेगा सुबह 7:30 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अपने दैनिक समय 7:05 पर होगा।

श्रोता बहनों के लिए कार्यक्रम महिला सभा का प्रसारण होगा शाम 5:35 पर। इसमें है क्रम महिला मंडी, क्रम महिला मंडली। इसमें संपूर्ण स्वाद स्व सहायता समूह की सखियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आप सुनेंगे। प्रतिभागी होंगी श्रीमती मोहिनी गौराहा, श्रीमती सुलेखा तिवारी और श्रीमती राही दुबे। प्रसारण समय है कल शाम 5:35। कल शाम 5:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी में चर्चा करेंगे होम हर्बल गार्डन से लाभ विषय पर। साथ ही क्रम होगा किसानवाणी गांव में। इसमें ग्राम परसापाली विकासखंड बमनिंडी जिला जांजगीर चांपा के कृषकों के मध्य धर्मांकित किया गया कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी और संपादन रिकॉर्डिंग पंचू भैया करेंगे। साथ ही मंडी मौसम की जानकारी और सामयिक सुझाव भी साझा किया जाएगा। प्रसारण समय सोता हूँ शाम 5:05। कल शाम 7:10 पर दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर विशेष श्रृंखला। विषय होगा किसान कल्याण। चित्रपट संगीत का आनंद ले सकेगा शाम 7:45 पर। और कल रात 8 बजे स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत धारा हम लेकर आएंगे। कल का विषय होगा योग और मधुमेह से बचाव। इसमें डॉक्टर अरिहन जैन से बातचीत करेंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। प्रसारण समय होगा कल रात 8 बजे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज के कुछ शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 बछर पूरा। प्रधानमंत्री है कहीं कि बिना गारंटी के कर्जा मिले ले लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में हो है सुधार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है आज राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के करें शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ल बढ़ावा दे पर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू। और प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज डारेगी वोट। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 बछर पूरा हो गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये योजना के प्रशंसा करत कहीं कि पीएम योजना है बिना गारंटी कर्जा वित्तीय समावेशन और विकास के नवा मौका खोल के लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में सुधार करे है। प्रधानमंत्री है सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं कि यह योजना विश्वास सम्मान ऊपर आधारित है। बछर 2020 में योजना के शुरू होए के बाद अब तक 1,12,00,000 कर्जा दे गए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रामसिया गांव ले राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ करें। एक महीना तक चलाया

0: अभियान देश के खेती वाले भुइयां ला बचाए और किसान मन ला वैज्ञानिक खेती करे बर जागरूक करे के दिशा में बड़का पहल हरे। इति छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ला बढ़ावा दे बर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू हो गए है। कृषि मंत्रालय के ए अभियान में किसान मन ला प्राकृतिक खेती मात्रा में खातु के प्रयोग और माटी के उर्वरा शक्ति ला बचाए के बारे में जागरूक करे जाही। ग्राम पंचायत विकास खंड और जिला स्तर में कृषक संगोष्ठी कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम राखे जाही। कृषि वैज्ञानिक मन ह किसान मन ला रासायनिक खातु के दुष्प्रभाव और प्राकृतिक खेती के फायदा के बारे में जानबा दीही। अभियान के दौरान किसान मन ला अपन खेती वाले भुइयां के एक हिस्सा में प्राकृतिक खेती करे के बात कहे जाही। संगे संग खातु के कालाबाजारी और जमाखोरी रोके बर निगरानी व्यवस्था ला और मजबूत करे जाही। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज मतदान डारेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगरीय निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 ठीन पद पर 96 मतदान केंद्र में मतदाता मन वोट डारिन। तो उहें त्रिस्तरीय पंचायत मन में जनपद पंचायत सदस्य सरपंच और पंच के कुल 151 पद पर 274 मतदान केंद्र में 1,00,000 ले ज्यादा मतदाता मन अपन मत के प्रयोग करीन। नगरी निकाय में मतदान बिहनिया 8 बजे ले संझा 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आएगी। तो उन्हें पंचायत चुनाव में मतदान बिहनिया 7 बजे ले मंझनिया 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम ले हुई। पंचायत चुनाव के मतगणना मतदान के तुरते बाद शुरू हो गई है। राज्यपाल रमेन डेका हा आज लोक भवन में राखे गए एक विशेष कार्यक्रम में माना स्थित SOS बालिका गृह के नोनी मन ले गोट बात करें। संगे संग उमन अंगदान और देहदान के संकल्प लेवैया मानवता के सेवा के संदेश दिवैया 75 जिन लोगन मल्ला सम्मानित करें। ये मौका में राज्यपाल हा कहिन कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाए ले कतकोन जरूरतमंद लोगन मल्ला नवा जिंदगी मिल सकते। ओमन कहिन कि जौन लोगन मन अंगदान और देहदान के संकल्प ले हैं ओमन समाज के बड़का नायक हरे। राज्यपाल हा नोनी मल्ला शिक्षा अनुशासन आत्मविश्वास और कड़ा मेहनत करे के बारे में कहिन। विश्व तंबाकू दिवस के मौका में प्रदेश भर में नशा मुक्ति और जन जागरूकता अभियान चला के लोगन मल्ला तंबाकू और आने नशीला पदार्थ के दुष्प्रभाव के जागरूक करेगी। यही कड़ी में सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डहार ले जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मन में जागरूकता कार्यक्रम संगोष्ठी और जनसंवाद राखे गे लोगन मल्ला नशा के गलत दुष्प्रभाव के जानबा देगी। थाना मन में नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स मन डहार ले कतकोन जगह में लोगन मन ला तंबाकू सेवन ले होवैया बीमारी के बारे में बताएगी। ये मौका में गांव के लोगन मन के संगे संग युवा मन ला नशा मुक्त समाज बनाए के शपथ दिवाएगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब बांचे समाचार को थी। होटल रेस्टोरेंट और आने व्यवसाय मन में प्रयोग होवैया 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के भाव में बढ़ोतरी करेगे है। राजधानी रायपुर में वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के भाव में 52 रुपया के बढ़ोतरी हो है तो उन्हें 5 किलोग्राम सिलेंडर के भाव में 13.50 रुपया की बढ़ोतरी हो है। मुख्यमंत्री आज कोंडागांव जिला के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में बने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के निरीक्षण करें। इस दौरान ओमन ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल सेवा सेतु के कामकाज लघलो देखिन। सुशासन तिहार में राखे गए जन समस्या निवारण शिविर में आम लोगन मन ले गलत व्यवहार और अपन काम में लापरवाही बरते के आरोप में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पांडे निलंबित कर दिए गए है। संभागायुक्त दुर्ग डहार ले जारी निलंबन आदेश में कहे गए है कि जन समस्या निवारण शिविर में ये अधिकारी मन डहार ले आम लोगन मन के संग गलत व्यवहार करेगी जौन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के विपरीत हरे। ए बारे में संभागायुक्त दुर्ग डहार ले मुख्य कार्यपालन अधिकारी ल कारण बताओ नोटिस घलो जारी करेगी रहीस फिर ओमन एखर बने ढंग ले जवाब नहीं दे पाइन। ये आदेश तुरते प्रभाव ले लागू हो गए है।

0: लोक निर्माण विभाग ह मार्च 2026 तक मंजूर करे गे जम्मो काम बर 30 जून तक निविदा मंगाए हे और 31 जुलाई तक काम शुरू करे के निर्देश दे हे। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ह आज जम्मो मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता मन के बैठक लेके विभागीय कामकाज के समीक्षा करिन। ओमन नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन में सड़क संपर्क परियोजना ला अवैया बछर के 31 मार्च तक पूरा करे और संगे संग भू अर्जन ले जुड़े मामला ला अवैया 6 महीना में निपटारा करे बर कहिन। तउहे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ह नवा रायपुर में विभागीय कामकाज के समीक्षा करिन। बैठक में ओमन कहिन कि आम लोगन मल्ला विकसित भारत अधिनियम के बारे में पूरा जानबा देना शासन के पहली प्राथमिकता है। ओमन 1 जुलाई ले लागू होवैया ए अधिनियम के बारे में पूरा जानबा समाज के आखिरी मनखे तक पहुंचाए बर विशेष जागरूकता अभियान चलाए के बात कहिन। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में हुए सड़क दुर्घटना में भिलाई के चंद्राकर परिवार के संगे संग 8 जिन लोगन के मौत हो गए। ये घटना साच पास रद्दा ऊपर हुई जहां पर्यटक मल्ले भरे एक ठिन कार करीबन 500 मीटर गहरा खाई में गिर गए। मृतक में भिलाई के एक दंपत्ति और 2 जिन लड़का घलो शामिल है। ये परिवार मन बेंगलुरु में रहत रहिन। जानबा के मुताबिक 2 परिवार डलहौजी ले साच पास घूमे पर गए रहिन। गाड़ी के वापिस नई लहूटे के जानबा मिले के बाद GPS के माध्यम ले एकर पता लगाया गिस। हादसा के कारण के जाँच करे जाते। जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाया जात ऑपरेशन अंकुश के तहत रायगढ़ पुलिस IPL फाइनल मुकाबला के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलावत एक ठिन संगठित गिरोह के पर्दाफाश करके 2 जिन सटोरी मन ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन के तीर ले मोबाइल फोन, नोट गिने के मशीन और सट्टा के रकम ले जुड़े 31,99,000 रुपया नकदी बरामद करे गए है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज लोरमी के गांव जरहापारा में जन चौपाल लगा के गांव के लोगन मन ले गोट बात करके जरहापारा में देवगुड़ी बनाए बर 5 लाख रुपया दे के घोषणा करीन। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम धमतरी जिला में पुलिस की पाठशाला के लोकार्पण करीन। एम आने आने प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी ले जुड़े किताब मल्ला मुफत में दे जाही। और रायगढ़ जिला के मांड नदी में हाथी के सावा के नदियां में डूबे ले मौत हो गए। यह घटना खरसिया रेंज के गुर्दा गांव के तीर हुई। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 बछर पूरा। प्रधानमंत्री है कहिन कि बिना गारंटी के कर्जा मिले ले लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में हो है सुधार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के करनी शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ला बढ़ावा देबर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू। और प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज डारेगी वोट। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं। श्रोताओं अब आनंद लेते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस गीत के साथ जिसके लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि शीतल राजेश, पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू सुजाता, शशांक सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफजाल ताज, नारायणपुर कोटवा बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित राय, हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से PS नवाकर, निर्मला और विशाल, सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। आप हैं कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, कर्मा चौक लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत और निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदन सिंह छिंदा, जसवीर सिंह जस्सी और सीता गीता, चिरमिरी कुरासिया कालरी से हमारे श्रोता हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, मजनू कटिला से कमल बालूजा, मधुसागर बालूजा।

गांव से राजेश वर्मा, हिरवन वर्मा, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। आप हैं यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और प्रियांशी मनवर। दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राव राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सरवत देशमुख। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, चेतना मस्किन और मेघा मस्किन। आप हैं नरगुड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। सीतामढ़ी बिहार से हैं मुसरत जहानाज, तलहत फरहत और नुजहत। आप हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान और उत्तम जमदाड़े। प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, कन्वीर और दपिंदर, कुलदीप और एकम, दमन, अभिजोत, ये सभी साथी हैं भूचो कनेचिया बठिंडा पंजाब से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। साथ में हैं पूजा परिहार। दतरंगी से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा। अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, राहुल, गोपी वर्मा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिन गुप्ता। समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता। राजकोट से हैं राजेश कृष्णा, स्वाति, ख्याति कुमारी। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन। पिपरलोड सरगांव से हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। पांदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन और ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह, पल्लवी, प्रखर, कुशल साह, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन और राजन साह। धुर्राबांदा माडापारा से प्रमोद साहू, नवीन, युवराज साहू। जगरांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गायवा मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, बब्बू, डब्बू। राजकोट से जूली जगदीश गुजराती और प्राची प्रवीण का नाम भी है। आप हैं देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजा, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल, यशस्वी वर्मा। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म महान से लिया गया ये गीत।

कार्यक्रम में आए श्रोताओं, आप सुनते हैं उस गीत को जिसके लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। रघुनाथपुरा राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। भिलाई से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, आजमा श्याम कुमार। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई, दीपक, जय श्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन। सराहनपुर से सैयद मसरूर शाइना, हसन नाजिया इब्राहिम। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोण और मोहम्मद शादाब खत्री। लूथरा खमरिया से हमारे श्रोता हैं अकरम अमीन, अर्श, अतिका। लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरनाल सिंह और रविराज सिंह। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है बागपत से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया। लूथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज। तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। बुड़गान से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति। पुतकी कला कवर्धा से राधे श्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे। आप हैं नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर, ऋतु राजपूत। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। पूर्णा जंक्शन मस्तानापुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत, चेतन भगत। सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ का मेल आया है। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यास्मीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज और मिफरा नवाज। बिलासपुर से हम

हमारे श्रोता हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता श्रीवास, पुष्पा अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्री, सावनपुर से ऋषि कुमार सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, आप हैं जालंधर से संदीप जटोलिया, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुहराद्दीन, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का ईमेल है, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित और ध्वनि, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या रामटेके, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कुमारी, आप हैं औरोटी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू, खंडवा से हमारे साथी हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजन कटारे, और गांव जाखोद से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। आप सबकी पसंद पर आई सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला।

हमारे कुछ और श्रोताओं ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है, तो उनका नाम भी हम साझा कर देते हैं। ये हैं लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहनी, कल्पित गर्वी, हिमाक्षी चौहान। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया रानन। वडसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। सराहनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिज डिकेस्ट्रो। बठेना से परमेश्वर साहू, राजवती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू। बोरसरा नैला से

प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। राजकोट से हैं जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण। आप हैं गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद और शगुप्ता संगम। तेलंगाना निजामाबाद से शेख हल्ला बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। लोरमी जचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। सौंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। पटियाला पंजाब से हैं सोम दत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंद कौर और मनु। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। धनौरी से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और आलिया आयान। निजामाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवलीत प्रीत कौर। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डाली, पूर्वेश साहू। आप हैं इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी। बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन। इसी गीत को सुनना चाहा है खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा। आप सभी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है, आइए आनंद लेते हैं।

0: श्रोताओं, एक सूचना हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। ये सूचना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित के संदर्भ में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन के माध्यम से राष्ट्रीय पोर्टल पर awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026 और ये है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये तो थी सूचना। अब एक संदेश।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
0: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। शाम के 6:45 होने को हैं। कुछ पलों में हिंदी में प्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार रायपुर केंद्र से।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज हुआ मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रूपये और 5 किलोग्राम के सिलेंडर में 13.5 रूपये की वृद्धि की गई। और मौसम विभाग प्रदेश के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर 1,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया गया, जबकि पंचायत चुनावों में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हुआ। पंचायत चुनाव की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से खेतों में संतुलित खाद प्रयोग करने की अपील की।
1: हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। गंगा गुंद खाद मत डालो, अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाओ और उसके बाद कौन से खाद की कितनी जरूरत है, संतुलित खाद डालो। उसे को खेती बदलनी है, बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसमें किसान को ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे। ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए।
0: इधर छत्तीसगढ़ में भी प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो गया है। कृषि मंत्रालय के इस अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्राम पंचायत, विकास खंड और जिला स्तर पर कृषक संगोष्ठी, कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव तथा प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी देंगे। अभियान के दौरान किसानों को अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर

0: लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। होटल, रेस्तराओं और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। राजधानी रायपुर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब यह सिलेंडर 3,346.50 रुपये में मिलेगा। वहीं 5 किलोग्राम के सिलेंडर के दामों में 13.50 रुपये की वृद्धि हुई है। अब यह सिलेंडर 882.50 रुपये में उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत संरक्षित लगभग 150 वर्ष पुरानी उड़िया भाषा में लिखित प्राचीन पांडुलिपियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इन पांडुलिपियों को सहेज कर रखने वाले परिवारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज की भागीदारी के बिना सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान भारत की बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल सेवा सेतु की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में माना स्थित SOS बालिका गृह की बालिकाओं से संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने अंगदान और देहदान का संकल्प लेकर मानवता की सेवा का संदेश देने वाले 75 नागरिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ने से कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोक निर्माण विभाग ने मार्च 2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों के लिए 30 जून तक निविदाएं आमंत्रित करने और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजनाओं को अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरा करने तथा भू अर्जन से जुड़े मामलों का आगामी 6 माह में निराकरण करने को कहा। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने नवा रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को विकसित भारत अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी देना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने 1 जुलाई से लागू होने वाले इस नए अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को कहा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में नशा मुक्ति और जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इसी कड़ी में सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जनसंवाद आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। थानों में नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा विभिन्न स्थानों पर लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को नशामुक्त समाज निर्माण की शपथ भी दिलाई गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए एक सड़क हादसे में भिलाई के चंद्राकर परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा साच पास मार्ग पर हुआ, जहां पर्यटकों से भरी एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों में भिलाई के एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये परिवार बेंगलुरु में रह रहा था। जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत रायगढ़ पुलिस ने आईपीएल फाइनल मुकाबले के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए

दो सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन तथा सट्टे की रकम से जुड़े 31,99,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों के साथ ही महासमुंद, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा सहित प्रदेश के 18 जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके चलते इन स्थानों में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने धमतरी जिले में पुलिस की पाठशाला का लोकार्पण किया। पुलिस की पाठशाला में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। सुशासन तिहार के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में आम जनता से अशिष्ट व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है। रायगढ़ जिले में मांड नदी में डूबने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। ये घटना खरसिया रेंज के अंतर्गत मांड नदी के गुर्दा गांव के पास की है। और कांकेर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 33,00,000 रुपए कीमत का चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज हुआ मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रुपए और 5 किलोग्राम के सिलेंडर में 13.5 रुपए की वृद्धि की गई। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रहता।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के शेष भाग का। सुनते हैं उस गीत को जिसके लिए मेल भेजा है भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेन साहू, दुष्यंत राघवेन साहू ने। दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती। छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डौली कबीर जाटव और देवशंकर जमादार। भूत कछार लोरमी से हमारे श्रोता हैं दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम धनराज मरकाम। राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से उदय भानपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता। पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव। पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा प्रांजल चंदन। जालंधर से हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत और उनके साथी, साथ हैं कमल शाहनी। मुरादाबाद दुल्हापुर से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। सराहनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग। आप हैं अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। पुरानी भिलाई 3 चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दकी, हमिदून, जिशान अहमद सिद्दकी, शाहनवाज अहमद सिद्दकी। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह, ओबेराय। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और

विजय संघई। भागलपुर से हैं कमल किशोर साह, अश्वनी अमरदीप, पशुपति साह, टिंकू मुस्कान। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले, वसुधा, वज्रसेन। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लाभ्या, आरव खुराना, एस के पब्बी। सराहनपुर से आशु। आप हैं गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी। और रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के इस अंक को देते हैं यहीं विराम। एक सूचना हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, ये सूचना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु। ये एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार के पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे एनएचडी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण। विषय है गरीब कल्याण।

0: करते हैं। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता पल्सेज और ऑयल सीड की जब हम बात करते हैं उसको कैसे लेके आएंगे, जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको डबल करना है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को डबल करना है ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम करें, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर में इंपोर्ट को हमें मिनिमाइज करना है और एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो हमारा रोड मैप उसी दिशा में होना चाहिए। उसके साथ साथ में जो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स है उसको भी ध्यान में रख के हमारा रोड मैप बनना चाहिए, और खेती को प्रोफेशन ऑफ चॉइस बनाने के लिए स्पेशली यूथ के लिए वो हमारे रोड मैप का हिस्सा होना चाहिए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें काम करने की जरूरत है। महोदय आइंस्टीन ने कहा था कि वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। तो इसका मतलब है कि वी नीड बिजनेस अनयूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं खेती में, वो आइसोलेशन में सॉल्व नहीं हो सकती, उसके लिए एक सिस्टम्स अप्रोच चाहिए, उसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए, उसमें होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच चाहिए, और इसीलिए माननीय मंत्री जी ने टीम एग्रीकल्चर की बात की, और मुझे लगता है टीम एग्रीकल्चर का मतलब है शेयर्ड विजन एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर आवर सिक्योर्ड फ्यूचर, एंड मुझे लगता है ये टीम उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, एक्शन प्लान हमारे रोड मैप बनाने के लिए।
1: खरीफ कृषि सम्मेलन में कृषि मंत्रालय के सचिव आतिश चंद्रा ने अपने वक्तव्य में कहा,
2: किसी खरीफ कॉन्फ्रेंस जो इस बार आयोजित की गई तो उसमें हम लोग ने जो इसका प्रारूप माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से बनाया उसमें यह था कि हम लोग हमेशा अपनी बात कहते हैं, राज्यों को भी हमको सुनना चाहिए। तो पहले दिन सभी प्रेजेंटेशन राज्यों द्वारा बनाए गए और हम लोग ने तीन ग्रुप में राज्यों को बांटा था, और उसमें भी सब राज्यों को मिक्स किया गया, ऐसा नहीं कि हम लोग ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में राज्यों को बांटा, हम लोग ने पूरे देश के राज्यों को इस तरह से संगठित किया कि सभी क्षेत्रों का समागम हो सके और उनको डिफरेंट डिफरेंट राज्य की क्या अनुभव है वो भी समझने और देखने और साझा करने का मौका मिले। देखिए जो हमारा केंद्र सरकार की प्रायोरिटीज और इनिशिएटिव्स हैं उनको हम इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स में विभाजित कर सकते हैं। पहला देखिए सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, और हमारा उद्देश्य क्या है, हम फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, और ये मुद्दा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे केंद्रित है। दूसरा जो है वो ये है कि इनकम सपोर्ट क्रेडिट रिस्क कवरेज और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो किसान को जो भी हम सपोर्ट करें उनका इनकम और रिस्क को कवर करने के लिए वो एक हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल। आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें, जैसे कि ICR के DG साहब और DAIR के सेक्रेटरी सर ने बताया कि कैसे हमारी चुनौतियां हैं, जिसको करने के लिए क्या क्या हमारे लिए एक्शन पॉइंट्स हैं, और हम जो एक कृषि रोडमैप की बात करते हैं वो ये सबको समाहित करेगा। फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो है कि हमको डाइवर्सिफाई करें, तो हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए हम कैसे इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, और इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट्स, हमको वो उगाना है जो विदेशी मार्केट्स में हमारे एक मार्केट उपलब्ध हो सके। जो इनपुट यूज एफिशिएंसी है वो हम लोग की जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस डेवलप हुई हैं ओवर द इयर्स उसमें ये एफिशिएंसी लगातार घटती जा रही है, चाहे वाटर हो, सीड हो, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, तो इस व्यवस्था को भी हमको सुदृढ़ करने की जरूरत है। बहुत सारे सॉल्यूशंस डिजिटल एग्रीकल्चर और IT इनिशिएटिव्स का एक एग्रीकल्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, और राज्य के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, अब इन सबको एक संग लाने की जरूरत है, जो कि एक प्रयास डिजिटल एग्रीकल्चर का चल रहा है उसमें राज्यों का बहुत बड़ा भूमिका है। जो वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और मैकेनाइजेशन, इसमें जो प्रिसिशन फार्मिंग की तरफ हमें जाना है, उसका भी एक इनिशिएटिव हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गोइंग फॉरवर्ड। और लास्ट है कि इनोवेशन, एक्सटेंशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारे इंडस्ट्री का रोल है, जो हमारे स्टार्टअप्स का रोल है, और प्लस हमारी एक्सटेंशन मशीनरी का ये रोल हमारा, तो ये हमारे लिए पूरा रूप से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। और आप देखिएगा कि भारत सरकार की जो योजनाएं वो इन सभी को कहीं ना कहीं छूती हैं, जो हमारी सेंट्रल स्कीम्स हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। तो कल की जो चर्चाएं हुई और जो हमारी प्रायोरिटीज केंद्र सरकार की रही है, देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इससे हम आगे अपनी सारी स्कीम्स को और सारी सर्विसेज को इसके मैकेनिज्म से डिलीवर करना चाहते हैं, और हम अपने जो एग्रीकल्चर का डेटा है उसकी असिमेट्री को खत्म करना चाहते हैं। तो ये दो बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ इस

0: इनिशिएटिव की स्वीकृति केंद्र सरकार से हुई है। अभी तक हम 9.76 करोड़ फार्मर आईडी बना चुके हैं और इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। पिछले 2-3 महीनों में बहुत तेजी से कई राज्यों ने इसमें उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन ये काम एक कैंपेन मोड में ही हो सकता है, ये रूटीन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरा था कि हमारे बहुत सारे कृषक ऐसे हैं जो कल्टीवेटर्स हैं, वो लैंड ओनर नहीं है, तो उनको हम कैसे फार्मर आईडी क्रिएट करें, ये अनुरोध सब राज्य सरकारों को भेजा गया था और बहुत मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राज्यों को कि इसमें सभी राज्यों ने पहल की और कुछ राज्य कल अपनी प्रस्तुति के दौरान जो उन लोग ने सॉल्यूशंस सामने रखे वो मतलब बहुत ही प्रेरणादायक थे और मुझे बहुत खुशी हुई कि अब हम इस दिशा में बढ़ गए हैं कि इस एक बहुत बड़ी समस्या हमारे कल्टीवेटर्स को आइडेंटिफाई करने की, उसका काम अब हम बहुत जल्दी पूरा कर सकेंगे।
1: इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा,
2: मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख है कि सही समय पर सब किसानों के पास बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। अब बीज के मिनी किट हम बांटते हैं, कई बार मिनी किट बांटते तब है जब बोनी हो जाती है कुछ जगह में, सब जगह की बात नहीं कर रहा, इसलिए सभी राज्य समय पर अपना बीज उठा लें और किसान तक पहुंचा दें, यह सबसे प्राइमरी काम है हमारा, और यह समय पर पहुंचा दिया तो अपने आप उत्पादन बढ़ जाएगा। कुछ राज्य में नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन ब्रीडर सीड भी पूरा नहीं उठाते टाइम पे, आपको ब्रीडर सीड उठाना चाहिए टाइम पे, सब राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, कई उठाते हैं। और मैं फिर हमारी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सहित राज्य के बीज विकास निगम, बीज निगम सबसे अपील करता हूं कि ये बीज उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है, हम मिलकर इस काम को करें। एक एक आग्रह मैं जरूर आज करना चाहता हूं, मैं डरा नहीं रहा लेकिन इस साल जिस तरह की खबरें आ रही है हम डरने वाले नहीं है, जो परिस्थिति होगी उसका मुकाबला करेंगे और देश को हर संकट के पार निकाल के ले जाएंगे, लेकिन आपातकालीन व्यवस्थाएं बनाना जरूरी है। एल नीनो के प्रभाव के कारण कुछ दिक्कतें हो सकती है, अभी स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं आई है, लेकिन हम देख रहे हैं मानसून कुछ लेट हो गया है, बीच में बारिश में गैप हो सकता है और इसलिए सूखा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी भी हम सबको करनी पड़ेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमने लगभग 1,74,000 क्विंटल का एक राष्ट्रीय बीज भंडार आवंटित किया है, जहां जैसे बीज की जरूरत होगी हम पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप आपात स्थिति अगर वैसी आती है तो अपनी तैयारी भी रखें। अलग अलग जिलों का प्लान भी बन रहा है कि अगर कम बारिश हुई तो हम क्या करेंगे, होगी ही कम, ये मैं नहीं कह रहा बिल्कुल अभी, लेकिन तैयारी इसकी जरूरत है। एक और मेरा आग्रह है, खराब गुणवत्ता वाले बीजों को ना जाने दें, उसके लिए प्रभावी मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। हमको सीड रिप्लेसमेंट की दर कैसे और बढ़े इसकी कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। एक सॉयल हेल्थ कार्ड कई राज्यों ने बताया बने हुए हमारे, लेकिन मित्रों दिल पे हाथ रख के सोचो कितने किसान उनका उपयोग करते हैं, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका उपयोग हो। अगर वो उपयोग करेंगे तो पता चलेगा कि यूरिया कितना डालना है, डीएपी कितना डालना है, काय की कमी है, तो ये हमको लीड करना पड़ेगा खेत बचाओ अभियान में। आपका स्वायत्त हेल्थ कार्ड ये कहता है, हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें उर्वरकों का वो उपयोग घटाया। पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई उभर के आई थी तो किसानों ने यही कहा था, घटिया से बचा लो, नकली से बचा लो, और मैं सब अफसरों से भी कह रहा हूं इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभी जो कीटनाशी अधिनियम है, हालांकि वो कमजोर है और हम लोग अभी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, कोशिश रहेगी कि संसद के अगले सत्र में अगला नया पेस्टिसाइड एक्ट लेके आए जो बहुत कठोर और प्रभावी हो। नकली बेचने वाले, नकली बनाने वाले दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, वो राष्ट्रीय अपराध एक तरह से करते हैं, किसान की बर्बादी का कारण बनते हैं, इसलिए हमको उस पर प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में मुझे एक बात करनी है, वो है खेत बचाओ अभियान की। खेत बचाओ अभियान ये आपके बिना नहीं चल सकता, 1 जून से 30 जून तक, 1 जून लगभग आई गई है, आज उसका पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, आप सबको भी निकलना पड़ेगा, मैं भी निकलूंगा, आप भी निकलें, बाकी मंत्रियों से भी कहें, केंद्रीय मंत्रियों से कहें, विधायकों से कहें, सांसदों से कहें, जनप्रतिनिधि लीड करें तो स्वीकारिता बढ़ती है।

0: खेत बचाव में माटी माटी में कौन से तत्व है वो सब देख के कौन सी फसल, कितना खाद, कौन सा पेस्टिसाइड। अभी हमने एक प्रयोग के बारे में और आपसे शेयर करना चाहता हूं, मित्र कीट भी पेस्टिसाइड की आवश्यकता उसको कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे कीट जो दूसरे हमारे शत्रु कीट है फसलों को, उनको ही खा जाते हैं। इसके बारे में भी बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, आईसीआर काम कर रहा है। खेत बचाओ अभियान में आप सब चीजें जोड़ सकते हैं। बीजों के मिनी किट देना अभी दो ना आप, जनता के सामने दो, और बड़े कार्यक्रम नहीं करना, गांव का ही कार्यक्रम करना है। 100-200 लोग आएंगे किसान, और उनके सामने प्रस्तुतिकरण होगा वहां की परिस्थिति के हिसाब से। दूसरे अम्बा योजनाओं का लाभ बांटते, केसीसी बन रहे, केसीसी बांटते अम्बा। किसान सम्मान निधि में कोई रह गया है औपचारिकता पूरी करके, उसका लाभ हम दे दें। हमको कोई मैकेनाइजेशन का लाभ देना, जनता के सामने दो ना। बेईमानी तब नहीं होगी जब सबके बीच में हम योजना का लाभ देंगे। मैं कहता हूं कि जितनी योजनाओं के लाभ अभी 6 महीने के विदिन 6 मंथ देना है, हम इस खेत बचाओ अभियान में दे दें। औपचारिकताएं पूरी करके यहां से मदर सेंक्शन जारी हो गई, आप औपचारिकताएं पूरी करो। ड्रिप देना है आपको, स्प्रिंकलर देना है, मैदान में दो ना गांव में सबके सामने। तो हम योजनाओं का लाभ भी उनको ढंग से बांट सकते हैं, जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं, कितना खाद डालना है वो भी बता सकते हैं। इसको बहुत गंभीरता से हम चलाने की कोशिश करें, खेत बचाओ अभियान की।
1: विगत दिनांक 29 मई 2026 राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। स्वर मंजीत कौर, प्रस्तुति सहयोग विशाल और दिनेश, संयोजक शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।

अभी हम दिल्ली से विशेष श्रृंखला अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 7:25 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का।

सौदागर, इस फिल्म का गीत आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडेकर के स्वर में, आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समीर का लिखा ये गीत। संगीत नदीम श्रवण का है, स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और साथियों ने, फिल्म है सड़क।

कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आशा भोसले के स्वर में आनंद बख्शी की रचना, आर डी बर्मन का संगीत है और फिल्म है शान।

ओम शांति ओम, अश्विनो का गीत आपने सुना। चित्रपट संगीत में आई श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म बिल्लू से लिया गया है गीत। आवाजें हैं सोहम आकृति कक्कर और साथियों की, गुलजार की रचना है और प्रीतम का संगीत।

कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म जब वी मेट से लिया गया है गीत। स्वर दिया है उस्ताद राशिद खान और साथियों ने, इरशाद कामिल की ये रचना है और संदेश सांडिल का संगीत।

जब वी मेट, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था उस्ताद राशिद खान ने, इरशाद कामिल के बोल थे और संदेश सांडिल का संगीत। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज के कलाकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए कलाकार आदेश श्रीवास्तव के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमों को।

FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन हमारे सभी सुधीर श्रोताओं का। आज के इस अंग में आपके साथ हूं मैं महावीर बरगा। कीजिए स्वीकार स्नेहिल नमस्कार। सुरों की महफिल में जब कोई गुल खिलता है, हर दिल उसके नामों से रोशन मिलता है। कुछ आवाजें वक्त की सीमा में नहीं बनती, उनका जादू सदियों तक यूं ही चलते रहता है। श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा में आज हम चर्चा करेंगे गायिका सुमन कल्याणपुर जी की, जो हम सब से विदा ले ली और छोड़ गई सुमधुर गीतों की बहार, खनक भरी मीठी मधुर सुरीली आवाज की मलिका सुमन कल्याणपुर जी को समर्पित है आज का ये अंक।

जब जब फूल खिले। इस फिल्म का ये गीत था श्रोताओं। श्रोताओं, ये गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना अपने समय में था, और ये कमाल था सुमन कल्याणपुर के स्वर में। गीतों में मोहब्बत की खुशबू बसी रही, सुरों में उनकी एक सादगी हंसी रही। जो सुन लिया कभी दिल से उनकी आवाज को, जो सुन लिया कभी दिल से उनकी आवाज को, यादों में वो धुन उम्र भर बसी रही। मित्रों, सुमन कल्याणपुर जी ने महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के साथ अनेक शानदार गीत गाए हैं। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराइयों और भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति का सुंदर संगम देखने को मिलता है, और यही कारण है कि उनके गीत समय की सीमाओं को पार कर आज भी उतने ही ताजगी से सराबोर रहते हैं हमेशा की तरह।

श्रोताओं, संगीत की सतरंगी दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी विनम्रता और साधना से अमर हो जाते हैं। सुमन कल्याणपुर जी एक ऐसी ही स्वर साधिका थी। उन्होंने लोकप्रियता की दौड़ कभी नहीं लगाई, बल्कि अपने सुरों को ही अपना पहचान बनाया। हम जब भी उनके गीत सुनते हैं तो केवल संगीत नहीं सुनते, बल्कि एक पूरे दौर की खुशबू, पूरे दौर की भावनाएं और पूरे दौर की यादें, ये सब कुछ महसूस करते हैं एक साथ उनकी मखमली आवाज़ में।

श्रोताओं, सन 1937 में जन्मी सुमन कल्याणपुर ने अपने संगीत की शुरुआत की ऑल इंडिया रेडियो से, यानी आकाशवाणी से। जी हाँ, साथ ही साथ चित्रकला में भी उनकी रुचि थी। संगीत के प्रति लगाव के कारण उन्होंने उस्ताद अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से संगीत सीखा। सन 1954 में पहली हिंदी फिल्म दरवाजा के लिए उन्हें गायकी का मौका लगा, साथ में थे तलत महमूद। सन 1950 और 60 के दशक में मुकेश, मोहम्मद रफी, मन्ना डे सहित विभिन्न शिखर कलाकारों के संग अपनी आवाज साझा किया सुमन जी ने। साथ ही हिंदी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, गुजराती सहित अन्य भाषाओं में भी गीत गाया। उनकी सुरों की ये दौलत कभी कम नहीं होगी, यादों की क्षमा कभी नम नहीं होगी। जब जब संगीत का इतिहास लिखा जाएगा, सुमन जी की चर्चा कभी कम नहीं होगी।

श्रोताओं, कल 31 मई को प्रख्यात गायिका सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही। उनका जाना सिर्फ एक गायिका का जाना नहीं है, बल्कि उस दौर का चला जाना है जब गीतों में शब्दों की मर्यादा, सुरों में शुद्धता और आवाज में ठहराव सबसे अहम हुआ करता था। सुमन जी के गाए गीत भारतीय संगीत प्रेमियों के दिल में सदा गूंजते रहेंगे। ऐसे कलाकार बार बार नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो छोड़ जाते हैं संगीत सुरों का एक विशाल खजाना।

मित्रों, सुमन कल्याणपुर ने शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोकगीत सहित हर तरह के गीत गाए। खुशियों के उदासी लिए, विरह सहित शोक चंचलता से भरे पूरे गीतों को भी अपनी मखमली आवाज दी सुमन कल्याणपुर ने। जायका लीजिए इस गीत का और नमन करते हैं ऐसे समर्पित कलाकार को।

तक मेरा रंग हुआ पग छोरी हो गई है हजामत कराए। श्रोताओं, बातें और हैं, गीत भी और हैं, नहीं है तो सुमन कल्याणपुर। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम रजनीगंधा के इस अंक को देते हैं यहीं विराम।

कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99%

0: से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री मार्ल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में

0: पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011 2371717।

0: पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway.
2: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's neighborhood-first, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President

समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

सुनिए आरजू फिल्म का गीत आशा भोसले मुबारक बेगम की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़

लिखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आई उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में यह फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आईं, सबसे पूछती रहीं दत्त साहब कहां हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगीं। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली

अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई।

पैंकियाट्रिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

ये बहाने, इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली, है बस इसी का इंतजार।

0: क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।
1: रेशम की डोरी

जब से लगाया है दिल इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे गर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में

0: conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। कल प्रातः 5:51 पर हमारा प्रसारण पुनः प्रारंभ होगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।